श्रोताओं, नीना मेहता व राजेंद्र मेहता की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। इसी के साथ आज के प्रभाती वंदना कार्यक्रम का समय अब यहीं पर समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 5:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें ग्लैरिसीडिया यानी जिंदा बल्ली से कंपोस्ट बनाने के संदर्भ में। ग्लैरिसीडिया का पौधा बहुत आसानी से तैयार होता है। इसे दो तरह से तैयार किया जाता है। एक तो वर्षा ऋतु में ग्लैरिसीडिया की 3 से 6 फीट लंबी डाल काटकर जमीन के किनारे मेड़ों, तालाबों, बांध या परती जमीन में लाइन से गड्ढे बनाकर टुकड़ों को लगाते हैं। पौधा बहुत जल्दी बड़ा होकर डालियों व पत्तियों से भर जाता है। इसके रखरखाव की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। भूमि में बीज की बुआई करके भी पौधा तैयार किया जा सकता है, परंतु इस पद्धति से पौधा तैयार करने में अधिक समय लगता है। साथियों, ग्लैरिसीडिया का उपयोग जैविक खाद के रूप में हम बखूबी कर सकते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष फसलों द्वारा मिट्टी से अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों के अवशोषण के फलस्वरूप मिट्टी की उर्वरा शक्ति का लगातार ह्रास हो रहा है। रासायनिक उर्वरक पोषक तत्वों की इस कमी को कुछ अंश तक ही पूरा कर पाते हैं। उर्वरकों के साथ पूरक के रूप में ग्लैरिसीडिया कंपोस्ट का प्रयोग करके इस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। उर्वरक पौधों के लिए प्रयोजनीय खाद उत्पादन में सक्षम होते हुए भी वास्तव में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ही केवल पौधों को प्रदान कर पाते हैं, जबकि ग्लैरिसीडिया कंपोस्ट से न केवल प्रमुख पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है बल्कि गौण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आपूर्ति हो जाती है। इसके प्रयोग से मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों में भी वांछित सुधार होता है। किसान भाइयों, अगर हम ग्लैरिसीडिया के साथ अन्य जैविक खादों की तुलना करें तो हम पाते हैं कि ग्लैरिसीडिया का पौधा बहुत जल्द बढ़ता है, यह आसानी से प्राप्त होता है और इसका प्रयोग बहुत सुगम है। कंपोस्ट बनाने में इसमें खर्च और समय दोनों ही कम लगता है। तुलनात्मक विश्लेषण करके देखा गया है कि इसकी हरी पत्तियों में नाइट्रोजन की मात्रा कंपोस्ट की अपेक्षा ज़्यादा होती है। फास्फेट और पोटाश की मात्रा अन्य जैविक खादों के समान ही होती है। अगर हम इसकी तुलना रासायनिक उर्वरकों से करें तब हम पाते हैं कि अगर यूरिया का हम प्रयोग करते हैं तो यूरिया का लगभग 30% भाग ही पौधों को उपलब्ध हो पाता है। शेष यूरिया या तो जमीन में नीचे चला जाता है या फिर वायुमंडल में नाइट्रोजन के रूप में गैस बनकर उड़ जाता है। जबकि जैविक खाद ग्लैरिसीडिया कंपोस्ट में मौजूद नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्व पौधों को ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इस तरह ग्लैरिसीडिया कंपोस्ट का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों की तुलना में अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। आइए अब देखें कि ग्लैरिसीडिया कंपोस्ट हम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों, जमीन के किनारे आवश्यकतानुसार लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गड्ढा बना दें। गड्ढा बनाते समय आप इस बात पर जरूर ध्यान दें कि गड्ढा हमेशा ऊंचे स्थान पर बनाएं जहां पर बारिश के पानी का जमाव ना हो। इस तरह से बनाए गए गड्ढों में ग्लैरिसीडिया यानी जिंदा बल्ली की हरी पत्तियों और कोमल डालियों को डाल दें और गड्ढों को भर दें। जब गड्ढे पूर्ण रूप से भर

0: जाते हैं तो उसके ऊपर मिट्टी की एक हल्की परत बना दें और इस प्रकार गड्ढे को ढक दें। बीच बीच में ऊपर से हल्का पानी देने की ज़रूरत होती है। इस तरह से 6 सप्ताह के अंदर ग्लैरिसीडिया यानी जिंदा बल्ली के पत्तियों का और छोटी छोटी डालियों का कंपोस्ट तैयार हो जाता है, जबकि अन्य कंपोस्ट को बनने में 2 से 3 महीने का समय लगता है। ग्लैरिसीडिया कंपोस्ट बनाना इस तरह बहुत सरल और सस्ता है। फसल की बुआई से पहले भूमि की तैयारी करते समय कंपोस्ट को भली भांति मिट्टी के साथ मिला देना चाहिए। अगर कंपोस्ट तैयार ना हो तो ग्लैरिसीडिया की हरी पत्तियों व कोमल डालियों का प्रयोग सीधे भूमि की तैयारी के समय हम खेत में कर सकते हैं। ये कंपोस्ट की ही तरह कार्य करता है। इसका अवशिष्ट भाग जो कि मिट्टी में पड़ा रहता है अगली फसल के लिए लाभदायक होगा। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि धान की फसल के लिए इसकी हरी पत्तियों और कोमल डालियों को हरी खाद के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। धान की फसल के लिए हरी पत्तियां और कोमल डालियां कंपोस्ट की अपेक्षा अधिक लाभदायक सिद्ध हुई है। तो इस प्रकार से ग्लैरिसीडिया की पत्तियों से जो हम कंपोस्ट बनाते हैं वो नाइट्रोजन से भरपूर होती है और इससे हम ज़्यादा फसल उत्पादन कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एग्री टिप्स। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। श्रोताओं, इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए सामान्य नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय

0: भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic two-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management, dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hoan has ordered a probe into the speedboat tragedy near Phu Quoc Island that claimed the lives of 15 Indian tourists. According to a statement issued by Consulate General of Vietnam in Mumbai, Prime Minister Hoan asked authorities to identify shortcomings, determine causes of the accident and implement corrective measures to prevent similar incidents in the future. The Vietnamese Prime Minister also directed authorities to take strict legal action against anyone found to have violated regulations that may have caused the accident. The tragic incident occurred yesterday when a speedboat carrying 36 people, including 4 crew members, flipped after reportedly being hit by a sudden wave of Root Nguai Islet. While local authorities managed to rescue 21 people, 15 Indians, including 2 women, were dead. The United States launched a new round of strikes against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC forces attacked a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. The U.S. military said the strikes were carried out at the direction of President Donald Trump. U.S. CENTCOM said the attack on the commercial vessel left a civilian crew member missing and the vessel is unable to continue the journey due to an onboard fire and significant

0: electric and engineer room damage. Explosions were heard in Keshm Island, Bandar Abbas and Sirik following the attacks. Meanwhile, Iran has closed Strait of Hormuz until further notice. The announcement came after the IRGC claimed it fired a warning shot and stopped the vessel. Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has issued 9 notices to food business operator Swiggy Instamart following multiple consumer complaints alleging violations under the Food Safety and Standards Act 2006. In a social media post, FSSAI said that the food business operator has been directed to submit a detailed explanation and compliance report, failing which appropriate action, legal action will be initiated. Consumer complaints allege the supply of expired, spoiled, rotten, contaminated and otherwise unsafe food products through Swiggy Instamart. The food regulator's notices also raise concerns over incorrect, invalid or non-existent license numbers and food business entities allegedly operating under names different from those registered with FSSAI. In the FIFA World Cup, England have advanced to the semi-finals, beating Norway 2-1 at Miami Stadium, Florida this morning. Jude Bellingham's brilliant two-goal display inspired England to come from behind to beat Norway after extra time. In tennis, the 21-year-old Linda Navskova won her maiden Grand Slam title after defeating fellow Czech Karolina Muchová 6-2, 5-7, 6-3 in the Wimbledon women's singles final at Centre Court, London last night. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी बारटांग कल 13 तारीख को सुबह 7 श्री विजयपुरम से माया बंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए प्रस्थान करेगा। जलयान 14 तारीख को सुबह 7 डिगलीपुर से छूटकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कैमलबे 14 तारीख को सुबह 8 श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा और उसी दिन रात 9 लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा। जलयान नालंदा 14 तारीख को सुबह 9 श्री विजयपुरम से ननकौड़ी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर जाएगा। जलयान 16 तारीख को सुबह 8 कैमल बे से छूटकर ननकौड़ी होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी नॉर्थ पैसेज आज दिन में 11 श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा। जलयान आज ही दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप तथा 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी हडबे आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा। जलयान आज ही दोपहर बाद 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानीचंगा आज शाम 5 श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा और कल 13 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज कल 13 तारीख को सुबह 6 श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप व लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए प्रस्थान करेगा। जलयान कल ही दोपहर 12 रंगत से छूटकर इन स्थानों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कमोटा कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा। वापसी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से जाएगा। वापसी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय कल 13 तारीख को सुबह दिन में 11 श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा। जलयान कल ही दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप तथा 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानीचंगा कल दिन में 11:30 पर एमवी रानीचंगा

कल 13 तारीख को दिन में 11:30 पर श्रीविजयपुरम से स्वराद्वीप जाएगा। जलयान कली दोपहर बाद 2 बजे स्वराद्वीप से शहीद द्वीप तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस आएगा। अब स्टेट आइलैंड कल दोपहर बाद 2:30 पर श्रीविजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा। वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। और एमवी हडबे कल 13 तारीख को शाम 5 बजे श्रीविजयपुरम से स्वराद्वीप जाएगा और अगले दिन 14 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम वापस लौटेगा। ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष
0: धनुष कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सोनिया का नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम को हमने सजाया है चूड़ी शीर्षक के चुनिंदा गीतों से। श्रोताओं, चूड़ी भारतीय संस्कृति में सौंदर्य, परंपरा और खुशी का प्रतीक मानी जाती है। चूड़ियों की मधुर खनक घर आंगन में उल्लास और अपनेपन का एहसास कराती है।

श्रोताओं, चूड़ी केवल एक आभूषण नहीं बल्कि कई यादों, रिश्तों और भावनाओं का सुंदर प्रतीक भी है। समय के साथ साथ चूड़ियों की डिजाइन बदलते रहे हैं, लेकिन उनका आकर्षण आज भी उतना ही बना हुआ है।

श्रोताओं, चूड़ी केवल गहना नहीं, ये नारी के स्नेह और सौंदर्य की पहचान है। इनकी खनक में बसती है खुशियों की धुन, जो हर आंगन को मुस्कान से भर देती है।

श्रोताओं, आज के इंद्रधनुष कार्यक्रम को हमने सजाया था चूड़ी शीर्षक के चुनिंदा गीतों से। आज के इस कार्यक्रम से अब सोनिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: श्रोताओं, आज के इंद्रधनुष कार्यक्रम को हमने सजाया था चूड़ी शीर्षक के चुनिंदा गीतों से। आज के इस कार्यक्रम से अब सोनिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंद्रधनुष। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से सुबह के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान।

विभीषण के श्रीराम के शरण जाने के साथ ही शत्रु की सेना का भेद जानने को रावण ने जो गुप्तचर भेजे थे उनकी वास्तविकता वानरों से अधिक देर तक छिपी न रह सकी। वे पकड़ लिए गए। सुग्रीव ने आदेश दिया कि उनका अंग भंग करके उन्हें लंका भेज दिया जाए। नाक कान काटे जाने की बात सुनकर गुप्तचर त्राही त्राही कर उठे और वानरों को ऐसा न करने के लिए श्रीराम की सौगंध दे दी। हाथ पांव बांधकर जब उन्हें लक्ष्मण जी के सम्मुख लाया गया तो दयालु लक्ष्मण ने उन्हें बंधन मुक्त कराया। रावण के नाम एक पत्र देकर गुप्तचरों को ये मौखिक संदेश पहुंचाने को कहा कि सीता जी को सादर वापस लाकर वो श्रीराम की शरण आए, अन्यथा अपना काल आया ही समझे। लंका पहुंचकर रावण से अपनी दुर्गति और लक्ष्मण का संदेश सुनाते हुए गुप्तचर शुक ने निवेदन किया, हे नाथ, वानर सेना का विवरण तो 100 करोड़ मुखों से भी करना संभव नहीं है। जिसने लंका जलाई और आपके पुत्र अक्षय कुमार का वध किया उसका बल तो अन्य वानरों की तुलना में कुछ भी नहीं है।

सुरेश वाडकर की आवाज़ में अभी आप रामचरित मानस गान की 297वीं कड़ी सुन रहे थे। संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वतन के गीत।

वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप कुछ देशभक्ति गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि द्वीपों के एक आध स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, साथ ही गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि द्वीपों के तटों के साथ साथ तूफानी हवाएं चलने की संभावना है, जिसकी गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलेंगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 14 जुलाई तक समुद्र में ना जाएं। कल सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम देश रागनी और ठीक उसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर आप सुन पाएंगे कुछ फिल्मी गीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर फनकार होंगे CH आत्मा। बाल जगत कार्यक्रम में सुबह 9:00 सुनिएगा लघु कथा आशा की दुनिया। तत्पश्चात आप विश्व युवा दिवस और पर जानकारी प्राप्त करेंगे और के कामराज की जयंती पर चर्चा होगी। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में वसीफुद्दीन डागर का गायन प्रसारित किया जाएगा। लाइव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो फरमाइश का समय रहेगा सुबह 10:00। स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम जनता जंक्शन आप सुन पाएंगे दिन में 11:00। 11:30 पर आप सुनेंगे गजल, फनकार होंगे अनूप जलोटा। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम के तहत सुनिएगा पुराने फिल्मी गीत। मलयालम कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रुति मधुरम। 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकारा होंगी प्रणीति देवी। घर संसार कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 1:30, जिसके तहत आप सुनेंगे एडवोकेट राकेश पाल गोविंद से ली गई भेंटवार्ता। विषय रहेगा महिलाओं के अधिकार, साथ ही विश्व युवा कौशल दिवस और जगन्नाथ रथ यात्रा पर चर्चाएं होंगी। 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राथमिक चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होगी, जबकि FM 100.9 MHz चैनल पर स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसमें आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत लहरी। 3:00 एल्बम टाइम और 3:30 पर होगा कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप सुनेंगे भक्ति गीत। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 10वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी शाम 4:30 पर। कार्यक्रम का विवरण बताया जाएगा शाम 4:40 पर। बाहरों की शाम कार्यक्रम का समय रहेगा 4:45। शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम में पुराने फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। बांग्ला कार्यक्रम में 5:30 पर रेडियो नाटक आप सुन सकते हैं। महिलाओं के लिए व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम संगीत संगनी का आप आनंद ले पाएंगे शाम 6:00। 6:30 पर धरती के गीत कार्यक्रम के तहत छोटा नागपुरी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। 7:20 पर होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युववाणी में शाम 7:30 पर आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8:00। रोजगार

समाचार व गौरव गान आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में कुमार मरदुर का स्वरवादन, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यूजीलैंड देशस्य स्वीयां ऐतिहासिकीं द्विदिवसीय यात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगत चत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अनन्तरं एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या उभय देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रा समये प्रधानमन्त्री मोदी न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा, पर्यटन, क्रीडा, पदप्रबन्धन, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालनादिषु क्षेत्रेषु पञ्च ज्ञापन पत्राणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैंड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: प्रधानमन्त्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारम्परिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढं, आत्मनिर्भरं, भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनं नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेना

0: दले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशनसमारोहं सम्बोधयन् अवदत्। रक्षामन्त्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनं भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय यूसीसी इति समान नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता। अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति। सेवा निवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानकाधिनियमस्य 2006 इत्यस्य उल्लंघन सम्बद्धानां बहूनां उपभोक्तृ परिवादानां अनन्तरं स्विगी इंस्टामार्ट इत्यस्मै नव अधिसूचनाः प्रेषिताः। फीफा विश्व चषक प्रतिस्पर्धायाम् अद्य प्रातः फ्लोरिडा इत्यत्र मियामी क्रीडा प्रांगणे इंग्लैंड देशेन नॉर्वे देशं 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। वियतनाम देशस्य प्रधानमंत्री ले मिन हुन इत्येषः फूक्वक द्वीपस्य समीपे जाता स्पीड बोट इत्येतस्याः दुर्घटनायाः अन्वेषणाय आदेशं प्रदत्तवान्। अस्याम् दुर्घटनायां 15 भारतीय पर्यटकाः निधनमुपगताः इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। जन सूचनाएं। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 6.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 88% तथा न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.4 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:02 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:58। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा विमान संख्या 2937 आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। अब एक आवश्यक सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी श्री विजयपुरम के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रेडियो कार्यक्रमों के चयन हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रण सूचना के अंतर्गत कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रस्ताव इन 3 श्रेणियों में आमंत्रित किए गए हैं: राजस्व साझेदारी मोड, प्रायोजित कार्यक्रम मोड तथा निःशुल्क मोड। कार्यक्रमों में रेडियो नाटक, वृत्त चित्र, कहानी वाचन, ऑडियो श्रृंखला, नवाचारी ऑडियो प्रारूप, पॉडकास्ट, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा संगीत आधारित कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम हिंदी में होगा और प्रत्येक एपिसोड की अवधि 14 या 28 मिनट तक होनी चाहिए। इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 तक उसके नवीनतम संशोधनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इस नीति में पात्रता, कार्यक्रम संबंधी दिशा निर्देश, अनुबंध की शर्तें, राजस्व साझेदारी, आकाशवाणी प्रसारण संहिता तथा वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। पात्र आवेदक निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक विवरण एवं सहायक दस्तावेजों सहित अपना प्रस्ताव ईमेल पर भेज सकते हैं hooaiarpodblur@prasarbharti.gov.in। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि है।

0: 31 जुलाई 2026 आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: भाइयों और बहनों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपने नसबंदी कराई है, क्या आपने IUD लगवाई है, क्या आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करते हैं, और ऐसे ही कई तरीके हैं परिवार नियोजन करने के, तो फिर इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अब जनता को भाषण दो तो बस तालियां बजा देती है। अब आप तो काम की बात सुनिए, परिवार नियोजन को अपनाइए, अपने बच्चों में अंतर लाइए, परिवार को सीमित रखिए, क्योंकि हमारा आज का फैसला आपके बच्चों का भविष्य बदल सकता है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। समर सेलिंग कैंप के समापन अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण कुमार ने राष्ट्रीय नौकायन चैंपियनशिप के शीर्ष 10 छात्र नाविकों को प्रमाण पत्र वितरित किए। डिगलीपुर में संपर्क से समाधान प्रशासन गांव की ओर के तहत जन शिकायत निवारण कार्यक्रम और राजस्व शिविर अदालत का आयोजन किया गया। समाज कल्याण निदेशालय ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए SBI शाखा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। और पर्यटन विभाग 17 जुलाई से 2 दिवसीय मॉनसून फूड एंड कल्चर फेस्टिवल के द्वितीय संस्करण का आयोजन करेगा। सुबह के समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। अंडमान निकोबार सेलिंग क्लब की ओर से स्कूली बच्चों के लिए आयोजित समर सेलिंग कैंप का कल मरीना पार्क स्थित जल क्रीड़ा परिसर में समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने शीर्ष 10 छात्र नाविकों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस कार्यक्रम में आयुक्त सह सचिव चंचल यादव, सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशक विनायक चमाड़िया, जिला पुलिस अधीक्षक श्वेता सुगतन, अंडमान निकोबार कमान के कमोडर नितेश गर्ग, स्किफ सेलिंग एसोसिएशन के अधिकारी और अभिभावक उपस्थित थे। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि इस तरह के बड़े आयोजन छात्रों में अनुशासन, समयबद्धता, भाईचारा, निडरता और टीम वर्क जैसे मूल्यों को विकसित करते हैं। ये गुण बच्चों को अधिक जिम्मेदार, जुझारू और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने में मदद करते हैं। लिटिल अंडमान में हाल ही में आयोजित सर्फिंग फेस्टिवल के सफल आयोजन का जिक्र करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि द्वीप समूह में विभिन्न प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स के विकास की अपार संभावनाएं हैं। मुख्य सचिव ने मुख्य भूमि में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय नौकायन चैंपियनशिप के लिए चुने गए 10 नाविकों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मध्योत्तर अंडमान जिला उपायुक्त सुशांत पदा की अध्यक्षता में हाल ही में डिगलीपुर में संपर्क से समाधान प्रशासन गांव की ओर के तहत जन शिकायत निवारण कार्यक्रम और राजस्व शिविर अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त संतोष प्रकाश, विभिन्न विभागों के प्रमुख, जिला प्रशासन के अधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि और आम जनता उपस्थित थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रशासन और नागरिकों के बीच सीधे संवाद के माध्यम से प्रभावी सेवा वितरण और जन शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करके जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करना है। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी शिकायतों को सुना और संबंधित विभागों को उनके शीघ्र समाधान के लिए त्वरित और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उपस्थिति को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त ने जवाबदेह, पारदर्शी और सुलभ शासन के प्रति जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराया। पर्यावरण एवं वन विभाग ने 77वें वन महोत्सव के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से विज्ञान केंद्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रधान

मुख्य वन संरक्षक रवि होरो, विज्ञान केंद्र के क्यूरेटर डॉ. मनु वशिष्ठ, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम. राजकुमार, मुख्य वन संरक्षक डॉ. दिनेश कन्नन के साथ पर्यावरण एवं वन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। इस आयोजन के हिस्से के रूप में गणमान्य व्यक्तियों और छात्रों ने स्थानीय परिदृश्य के अनुकूल विभिन्न स्वदेशी वृक्षों की प्रजातियों के पौधे लगाए। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने देशव्यापी अभियान एक पेड़ माँ के नाम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी हितधारकों को पूरे वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवसरों पर इस तरह के वृक्षारोपण अभियान आयोजित करने को कहा। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों से बाहर वृक्षों के आवरण का विस्तार करने के लिए सरकारी विभागों, पंचायती राज संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और आम जनता के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है जागरूकता कार्यक्रम और मानसून फूड एंड कल्चर फेस्टिवल। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। समाज कल्याण निदेशालय की ओर से विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कल मोहनपुरा स्थित SBI शाखा में नशा मुक्त भारत अभियान विषय के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान बाल गृह के प्रोबेशन अधिकारी ने प्रतिभागियों को निदेशालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी दी। इन योजनाओं के तहत पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध लाभों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण में व्यक्तियों तथा समुदायों की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। SBI ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक सी राज ने जागरूकता बढ़ाने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की अधिक से अधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह की पहलों को लगातार आयोजित करने के महत्व पर बल दिया। पर्यटन विभाग मानसून फूड एंड कल्चर फेस्टिवल के द्वितीय संस्करण का आयोजन कर रहा है। यह उत्सव 17 से 19 जुलाई तक प्रदर्शनी मैदान में शाम 4 बजे से आयोजित होगा। इसके लिए विभाग ने होटल व्यवसायियों, रेस्तरां मालिकों, कैफे मालिकों, खाद्य उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, शिल्पकारों, किसानों, स्टार्टअप्स, होम शेफ, स्थानीय उद्यमियों के साथ स्थानीय कलाकारों को आमंत्रित किया है। इच्छुक प्रतिभागी स्टॉल आवंटन और भागीदारी के लिए अपना आवेदन निदेशालय के ऑपरेशनल सेक्शन में या ईमेल के माध्यम से 14 जुलाई दिन में 11 बजे तक जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विभाग के प्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है। अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रचार समिति के अध्यक्ष TSG भास्कर ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से श्री विजयपुरम और मुख्य भूमि के प्रमुख शहरों के बीच संचालित होने वाली विमानों द्वारा वसूले जा रहे अत्यधिक हवाई किराए को नियंत्रित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने अपने लिखे पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला कि श्री विजयपुरम से दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापत्तनम और मुख्य भूमि का हवाई किराया आम जनता के लिए वहन योग्य नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के किराए से द्वीपवासियों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है। इसके कारण पर्यटन भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप द्वीपों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है। श्री भास्कर ने कहा कि द्वीप समूह के लोग उच्च शिक्षा, विशेष चिकित्सा उपचार, रोजगार, व्यवसाय और पारिवारिक आपात स्थितियों के लिए पूरी तरह से हवाई संपर्क पर निर्भर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। समर सेलिंग कैंप के समापन अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण कुमार ने राष्ट्रीय नौकायन चैंपियनशिप के शीर्ष 10 छात्र नाविकों को प्रमाण पत्र वितरित किए। डिगलीपुर में संपर्क

0: से समाधान प्रशासन गांव की ओर के तहत जन शिकायत निवारण कार्यक्रम और राजस्व शिविर अदालत का आयोजन किया गया। समाज कल्याण निदेशालय ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए SBI शाखा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया और पर्यटन विभाग 17 जुलाई से 2 दिवसीय मॉनसून फूड एंड कल्चर फेस्टिवल के द्वितीय संस्करण का आयोजन कर रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपने नसबंदी कराई है, क्या आपने IUD लगवाई है, क्या आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करते हैं, और ऐसे ही कई तरीके हैं परिवार नियोजन करने के, तो फिर इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अब जनता को भाषण दो तो बस तालियां बजा देती है। अब आप तो काम की बात सुनिए, परिवार नियोजन को अपनाइए, अपने बच्चों में अंतर लाइए, परिवार को सीमित रखिए, क्योंकि हमारा आज का फैसला आपके बच्चों का भविष्य बदल सकता है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम देश रागिनी।

देशभक्ति गीतों से सजे इस कार्यक्रम देशरागनी में स्वीकार कीजिए सोनिया का नमस्कार। श्रोताओं, आइए हम उन वीर सपूतों को नमन करें जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत का अमूल्य उपहार दिया। उनका त्याग और बलिदान हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा।

श्रोताओं, जब भी तिरंगा शान से लहराता है, हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। देश प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना, समाज में प्रेम और भाईचारा बनाए रखना और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देना ही सच्ची देशभक्ति है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोता, इस समय सुबह के 7:30 हुए हैं। अब सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

श्रोताओं नमस्कार। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, बस आपको उसका पूरा लाभ उठाना है। अच्छे विचारों को अपनाइए और अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। इसी सुविचार के साथ आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सुनते हैं राशिद अली की आवाज़ में अब्बास टायरवाला का लिखा ये गीत। संगीत है ए आर रहमान का, फिल्म का नाम है जाने तू या जानू ना।

श्रोताओं नमस्कार। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, बस आपको उसका पूरा लाभ उठाना है। अच्छे विचारों को अपनाइए और अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। इसी सुविचार के साथ आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सुनते हैं राशिद अली की आवाज़ में अब्बास टायरवाला का लिखा ये गीत। संगीत है ए आर रहमान का, फिल्म का नाम है जाने तू या जानू ना।

0: जाने तू या जाने ना, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे राशिद अली को। श्रोताओं, अगला गाना सुनते हैं लव स्टोरी 2050 का से ये गीत। आवाज़ें हैं शान अलका याग्निक व साथियों की। जावेद अख्तर का लिखा ये गीत है, संगीत है अनु मलिक का।
1: People, please listen to me. This gentleman over here is going to recite some meaningful poetry for us.
2: What?
1: Karan Malhotra from Sydney, age 23, current status single and finally futtering.
2: No, I can't do this. Have you lost your marbles?
3: Mausam achanak ye badla hai kyun?

एक आवश्यक सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी श्री विजयपुरम के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रेडियो कार्यक्रमों के चयन हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रण सूचना के अंतर्गत कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रस्ताव इन तीन श्रेणियों में आमंत्रित किए गए हैं: राजस्व साझेदारी मोड, प्रायोजित कार्यक्रम मोड तथा निःशुल्क मोड। कार्यक्रमों में रेडियो नाटक, वृत्तचित्र, कहानी वाचन, ऑडियो श्रृंखला, नवाचारी ऑडियो प्रारूप, पॉडकास्ट, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा संगीत आधारित कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम हिंदी में होगा और प्रत्येक एपिसोड की अवधि 14 या 28 मिनट तक होनी चाहिए। इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 तथा उसके नवीनतम संशोधनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इस नीति में पात्रता, कार्यक्रम संबंधी दिशा निर्देश, अनुबंध की शर्तें, राजस्व साझेदारी, आकाशवाणी प्रसारण संहिता तथा वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। पात्र आवेदक निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक विवरण एवं सहायक दस्तावेजों सहित अपना प्रस्ताव ईमेल hoo@prasarbharti.gov.in पर भेज सकते हैं। विस्तृत दिशा निर्देश एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए प्रसार भारती तथा आकाशवाणी की आधिकारिक वेबसाइट prasarbharti.gov.in/nipp और akashvani.gov.in/files/nipp/pdf देखें। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। ये सुनहरा अवसर न चूके अपने रचनात्मक कार्यक्रमों को भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक तक पहुंचाने के लिए आज ही अपना प्रस्ताव भेजें। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, आकाशवाणी के श्री विजयपुरम से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रॉक ऑन का गीत, जिसे गाया फरहान अख्तर ने जावेद अख्तर के बोल, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म चमकू का गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था मोंटी शर्मा ने। आवाजें थी श्रेया घोषाल व साहिल की। और अब सुनते हैं केके का गाया, कुमार का लिखा तथा जस्टिन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म हाईजैक का ये गीत।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज के गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय अब यहीं पर समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में

0: वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से
4: स्वास्थ्य का वरदान।
5: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों पर प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
6: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता युरियाले माव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पंजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
7: अमरीका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमरीका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि

0: हॉर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए दो अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का

0: प्रीना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का
1: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमरीका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा सम्पन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beats Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals. And Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding.

श्रोताओं, इसी के साथ आज के सुगम संगीत कार्यक्रम का समय अब यहीं पर समाप्त होता है। आज के फनकार थे CH आत्मा। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बाल जगत।

अभिभावकों को अभिवादन। आप ट्यून कर चुके हैं आपका अपना रेडियो स्टेशन और आप सुन रहे हैं आपका अपना बाल जगत कार्यक्रम। मैं हूँ आपके साथ आपकी रीता दीदी। आज हम एक ऐसी यात्रा पर हैं जहाँ ना तो कोई ट्रैफिक जमा है और ना ही होमवर्क का दबाव। आज हम बात करेंगे आशा की। क्या आप जानते हैं आशा क्या है? आशा अंधेरी रात में जलने वाला वो छोटा सा दिया है जो हमें रास्ता दिखाता है। चलिए आज अपने सपने के आसमान को थोड़ा और रंगीन बनाते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि धन का मतलब पैसा, गहने या खिलौने होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी आशा के धन के बारे में सोचा है? यह वह खजाना है जो आपके मन के अंदर सुरक्षित है। जब आप गिरकर दोबारा खड़े होते हैं तो वो है आशा। जब आप किसी मुश्किल विषय को बार बार पढ़ते हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि आप इसे सीख जाएंगे, तो वो है आशा। यह आत्मविश्वास का वो सिक्का है जो कभी खत्म नहीं होता। आज का पहला मंत्र याद रखिए दोस्तों, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अगर मन में आशा है तो जीत आपकी निश्चित है। क्या आज आपने किसी को मुस्कुराते हुए ऑल द बेस्ट कहा? अगर नहीं तो अभी कहिए, क्योंकि आशा बांटने से बढ़ती है। आइए आपको एक गांव ले चलते हैं। एक लड़का था जिसका नाम था नकुल। नकुल को लोग कहते थे कि वह पढ़ाई में कमजोर है। एक दिन उसने एक सूखा हुआ बीज गमले में बो दिया। सबने कहा ये नहीं उगेगा, लेकिन नकुल को आशा थी। वह रोज उसे पानी देता, धूप में रहता और उससे बातें करता। महीनों बीत गए। अचानक एक दिन मिट्टी से एक नन्ही सी हरी पत्ती निकली। नकुल के लिए वह सिर्फ एक पौधा नहीं था, वह उसका विश्वास था। उसने सीख लिया था कि अगर धैर्य रखे और अपना काम पूरी लगन से करे तो परिणाम जरूर मिलता है। तो दोस्तों, क्या आपके पास कोई ऐसा जादुई बीज है? कोई ऐसा सपना जिसे आप रोज सींच रहे हैं? अब समय है एक छोटी सी एक्टिविटी का। आज आपको अपने घर में एक कागज लेना है, उस पर अपने 3 सबसे बड़े सपने को लिखें या उसकी फोटो बनाएं। मुझे एक अच्छा चित्रकार बनना है, मुझे स्कूल की दौड़ प्रतियोगिता जीतनी है, मुझे अपने माता पिता के लिए कुछ खास करना है। इसे अपने कमरे की दीवार पर चिपका दें। जब भी आप निराश हो बस इस कागज को देखें। इसे आशा की दीवार कहें। याद रखें, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से कागज पर लिखे सपने से होती है। सुनिए एक और प्यारी सी छोटी सी कहानी। एक बच्चा था जिसका नाम था आर्यन। उसे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने हार मान ली। तभी उसकी दादी ने उससे कहा, बेटा घड़े को भी आकार लेने के लिए आग में तपना पड़ता है। तुम्हारी कला अभी निखर रही है, दुनिया को दिखाने की जल्दी मत करो, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। आर्यन ने हार नहीं मानी, उसने रोज अभ्यास किया और आज आर्यन के चित्र बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शित होते हैं। क्या आर्यन की आशा खत्म हुई? नहीं, उसने अपनी आशा को मेहनत का रंग दिया।

ऊर्जा है इस धुन में। उम्मीद है आप सब भी अब दोगुने जोश के साथ भर गए होंगे। रेडियो का यह माध्यम मुझे आप तक लाता है, लेकिन आपकी मेहनत आपको आसमान तक ले जाती है। याद रखिए, आप दुनिया की सबसे कीमती चीज है। अपनी काबिलियत पर कभी शक मत कीजिएगा। आज का दिन कैलेंडर में एक खास निशान लिए हुए है, 12 अगस्त यानी विश्व युवा दिवस। क्या आप जानते हैं कि युवा सिर्फ एक उम्र नहीं है? युवा होने का मतलब है ऊर्जा, नई सोच और कुछ कर दिखाने का जज्बा। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप यानी देश के छोटे और युवा नागरिक कल का बड़ा भविष्य बन सकते हैं। विश्व युवा दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया को यह याद दिलाना है कि युवा सिर्फ भविष्य के नेता नहीं हैं, बल्कि वे आज के परिवर्तन कर्ता भी हैं। बच्चों, चाहे वह पर्यावरण को बचाना हो, तकनीक में नया आविष्कार करना हो या समाज में फैली कुरूतियों को दूर करना हो, दुनिया की हर बड़ी बदलाव की शुरुआत युवाओं से होती है। आज के दिन हम उन युवाओं को याद करते हैं जिन्होंने अपने साहस से दुनिया को प्रेरित किया। अक्सर बच्चे सोचते हैं, मैं अभी छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, आज के दिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छोटे कदम ही लंबी यात्रा की नींव रखते हैं। क्या आपने कभी प्लास्टिक का कचरा उठाकर उसे डस्टबिन में डाला है? आपने

एक युवा नागरिक का फर्ज निभाया है। अगर आप स्कूल में किसी ऐसे बच्चे की मदद करते हैं जो पढ़ाई में थोड़ा पीछे है, पर आप एक अच्छे समाज की नींव रख सकते हैं। आपकी आशा ही वह शक्ति है जो दुनिया को बेहतर बनाती है। आज के इस खास मौके पर मैं आप सभी बच्चों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको दुनिया बदलने की ताकत मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या बदलेंगे? सोचिए सोचिए। कोई कहेगा मैं ज्यादा पेड़ लगाऊंगा, तो कोई कहेगा मैं सबको पढ़ाऊंगा। यही तो है युवाओं की असली पहचान। आपके ये सपने ही कल की हकीकत बनेंगे। आज के दिन अपने डायरी में लिख डालिए कि आप बड़े होकर दुनिया को नया तोहफा देना चाहते हैं।

याद दिलाता है कि हमारे अंदर एक शेर छिपा है। चाहे आप 10 साल के हो या 18 साल के, आपकी सोच में वह ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। बस जरूरत है अपने अंदर के हुनर को पहचानने की और गलत के खिलाफ आवाज उठाने की। विश्व युवा दिवस पर मेरी आप सभी से एक गुजारिश है, आज अपने माता पिता या गुरुओं से पूछिए कि वे युवावस्था में कैसे थे और उन्होंने क्या संघर्ष किया। उन अनुभवों से सीखिए। याद रखिए, आप भारत का गौरव हैं। खूब खेलिए, खूब पढ़िए और खूब सपने देखिए। चलिए अब थोड़ा चैलेंज लेते हैं। आज आप रेडियो पर सुन रहे हैं तो क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे कल और बेहतर हो जाए। मैं आपको देती हूँ युवा शक्ति चैलेंज। आज अपने घर या मोहल्ले में कोई एक ऐसी चीज खोजे जिसे आप सुधार सकते हैं। किसी की मदद करना। आज के दिन अपने किसी ऐसे हुनर को निखारें जिसे आपने डर के मारे छोड़ दिया था। पेंटिंग, सिंगिंग या कोई खेल। एक संकल्प लें, मैं आज से किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगी।

संगीत की ये लय आपको याद दिलाती है कि आपकी धड़कनें रुकने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए है। आजकल के भविष्य के साथ साथ आप आज का अस्तित्व भी हैं। यदि आज आप खुद को बेहतर बनाएंगे तो कल अपने आप सवर जाएगा। समय की सुई अपनी गति से बढ़ रही है और हमें भी अपनी गति से बढ़ते हुए आगे बढ़ना है। विश्व युवा दिवस के इस मौके पर अपने भीतर की उस आग को जलने दें जो आपको हमेशा कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। अपने सपनों को खुला आसमान दे। विश्व युवा दिवस की बात हो और स्वामी विवेकानंद का जिक्र ना हो यह मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, यह लक्ष्य का मतलब सिर्फ बड़ी डिग्री या पैसा नहीं है। कल्पना कीजिए, अगर भारत का हर बच्चा एक छोटा सा पेड़ लगाए तो 30 करोड़ पेड़ एक दिन में लग जाएंगे। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? आप अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में मोड़े, फिर देखिए आपके विचार कैसे दुनिया बदल सकते हैं। दोस्तों, 15 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में कितना खास है, चलिए जानते हैं। एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ था 15 जुलाई को जिन्होंने भारत में शिक्षा की नींव को मजबूत किया। उन्हें हम शिक्षा के मसीहा और किंग मेकर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे के कामराज जी के बारे में। कामराज जी का जन्म 1903 में तमिलनाडु के बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके मन में एक ही आग थी, देश को आजाद देखना और समाज को शिक्षित करना। वे भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। आजादी के बाद जब वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया वह था शिक्षा का विस्तार। उन्होंने कहा था, यदि आप एक स्कूल बनाते हैं तो आप एक जेल को बंद कर देते हैं। उनका मानना था कि गरीबी को केवल शिक्षा से ही मिटाया जा सकता है। क्या आपको पता है कि आज स्कूल में जो स्वादिष्ट मिड डे मील, दोपहर का भोजन आपको मिलता है, उसकी शुरुआत के पीछे किसका हाथ है? वह थे कामराज जी। एक बार उन्होंने देखा कि बच्चे स्कूल के बजाय अपने पालतू पशुओं को चराने या काम करने जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, ये स्कूल क्यों नहीं जाते? पता चला कि घर में खाने की कमी है तो बच्चे काम के लिए मजबूर हैं। कामराज जी ने तुरंत सरकारी स्कूल में मुफ्त दोपहर के भोजन की योजना शुरू की। इससे क्या हुआ, बच्चे स्कूल आने लगे, पढ़ने लगे और उनका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल प्रोग्राम योजनाओं में से एक है। कामराज जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी सादगी थी। वे मुख्यमंत्री थे, बेहद साधारण तरीके से रहते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कोई भी संपत्ति नहीं खरीदी। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनके पास सिर्फ कुछ जोड़ी धोती और शर्ट थी। वे बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। वे अक्सर स्कूल के निरीक्षण पर जाते थे। वे यह नहीं देखते थे कि स्कूल की इमारत कितनी बड़ी है, बल्कि यह देखते थे क्या वहाँ का बच्चा खुश है और क्या वह सीख रहा है। बच्चों के लिए कामराज जी के जीवन से तीन बड़ी सीख दी है। जीवन इस बात का प्रमाण है कि सत्ता का असली सुख लोगों की सेवा में है। साथ ही सिर्फ डिग्री पाने के लिए नहीं बल्कि खुद को और अपने समाज को बेहतर बनाने की होती है। चाहे आप कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, अपनी जड़ों और सादगी को कभी ना भूलें। अपने आसपास के किसी जरूरतमंद बच्चों को अपनी किताब गिफ्ट करें। यही कामराज जी को आप

की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, के कामराज जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा शुरू किए गए हजारों स्कूल और लाखों बच्चों के पेट की भूख मिटने वाली मिड डे मील योजना आज भी उनकी मौजूदगी का एहसास कराती है। हमें याद दिलाता है कि हम बड़े होकर केवल डॉक्टर या इंजीनियर ना बने, बल्कि एक इंसान बने जो दूसरों की जिंदगी में उजाला ला सके। उम्मीद है आपको शिक्षा के मसीहा के बारे में यह जानकर अच्छा लगा होगा। हम संकल्प लेते हैं कि हम भी अपने देश को साक्षर और समृद्ध बनाने में अपना योगदान देंगे। कामराज जी का जीवन एक जलते हुए दीपक की तरह है, जिसने अपना प्रकाश दूसरों के भविष्य को चमकाने में लगा दिया। हम उन्हें नमन करते हैं। दोस्तों, यदि नियत साफ हो तो एक अकेला इंसान भी पूरे देश की तकदीर बदल सकता है। दोस्तों, के कामराज जी के विचार, सादा जीवन उच्च विचार, कामराज का यही था आधार। कामराज जी की सबसे बड़ी विशेषता सादगी को दर्शाती है। वे भारत के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक होने के बावजूद एक छोटे से घर में रहते थे और साधारण कपड़े पहनते थे। यह बच्चों को सिखाता है कि महान बनने के लिए दिखावे की नहीं, बल्कि शुद्ध विचारों और सादगी की आवश्यकता होती है। आओ मिलकर ऐसा भारत बनाए जहाँ हर बच्चा स्कूल जाए। यह बच्चों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना जगाता है। तो दोस्तों, अब समय हो गया है आज के इस खास सफर को विराम देने का। आज का दिन अद्भुत रहा। आज हमने विश्व युवा दिवस के जरिए अपनी ऊर्जाओं को पहचाना और के कामराज जी की सेवा और शिक्षा के उस दीपक को देखा जिसने पूरे भारत को रोशन किया। युवा दिवस कहता है उठो और बदलाव लाओ, और कामराज जी का जीवन कहता है बदलाव का मतलब है किसी भूखे को भोजन देना और हर बच्चे को स्कूल भेजना। मेरे नन्हे साथियों, आज के दिन बस एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए। जैसे कामराज जी ने अपनी सादगी से लाखों जिंदगियां बदल दी, वैसे ही आप भी अपनी छोटी सी कोशिश से आशा की दुनिया को और खूबसूरत बनाएंगे। आप कल का भविष्य हैं। आप आज की वो शक्ति हैं जो अभी से दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखिए, अपने सपने पर यकीन रखिए और सेवा की भावना को कभी मत छोड़िए। कामराज जी के उस महान सपने को पूरा कर रहे होते हैं। आज का हमारा मंत्र याद रखिए दोस्तों, सादा जीवन उच्च विचार, शिक्षा ही है असली आधार। आओ मिलकर आज हम एक नई दुनिया सजाएं, युवा मन के हौसले से सपनों को पंख लगाएं, आंखों में उम्मीद भरकर हाथों में विश्वास लिए निकल पड़े हैं राहों पर मंजिलों की प्यास लिए। कामराज जी की सादगी का गौरव गान गाएंगे, शिक्षा की उस मशाल को घर घर तक पहुंचाएंगे। भूख मिटाने का संकल्प जो उन्होंने था दिखाया, वही ज्ञान का दीप आज हमने भी है जलाया। नन्हे हाथों में कलम उठाए वो ही कल की शान है, सेवा और समर्पण की यही नई पहचान है। उठो युवा जागो बच्चों, समय का पहिया घूमेगा, तुम जो करोगे आज वही कल का भारत चुनेगा। आशा की हर किरण बनी आज हमारी शक्ति है, सीखना और सिखाना ही जीवन की असली भक्ति है। सपनों को ना छोटा समझो, ऊंचे इसके धाम है, सादा जीवन उच्च विचार यही कामराज का पैगाम है। दोस्तों, वक्त हो गया है आज के सफर को विराम देने का, लेकिन याद रखिए आपके हाथ में आपकी भविष्य की चाबी है। आशा की धन ही वो कुंजी है जो मुश्किल के हर दरवाजे को खोल सकती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि आशा का धन ही सबसे बड़ा धन है। इसे संभाल कर रखिए, इसे बढ़ाइए और इसे दूसरे के साथ साझा कीजिए। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे किसी नए विचार के साथ, किसी नई उम्मीद के साथ। अपने माता पिता को एक प्यारी सी जादुई झप्पी जरूर दीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि आप कितने खुश हैं। आपकी रीता दीदी आपसे लेती है विदा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं।

0: ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: हेलो, मैं हूँ HIV वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूँ। मुझे उनसे दोस्ती करना बहुत पसंद है जो जाने अनजाने एक से ज्यादा साथियों के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करते हैं। ये किसी भी तरह के सेक्स में कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते। मैं तो उन पर भी नजर बनाकर रखता हूँ जो अपने रेगुलर पार्टनर के साथ भी कॉन्डम नहीं लगाते।

0: या किसी भी तरह के सेक्स में कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते। मैं तो उन पर भी नजर बनाकर रखता हूँ जो अपने रेगुलर पार्टनर के साथ भी कॉन्डम नहीं लगाते, और जो नशे की हालत में दोस्तों के साथ एक ही सुई व सिरिंज का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन छोटी छोटी लापरवाहियों से मुझे उनके पास आने का मौका मिल जाता है। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या?
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं वसीफुद्दीन डागर का गायन। इनके साथ पखावज पर मोहन श्याम शर्मा और तानपुरे पर नफीस डागर तथा आशा विश्वनाथ ने संगति की है। तो लीजिए सुनिए वसीफुद्दीन डागर का गाया राग अहिर भैरव।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 MHz पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश,
0: हेलो फरमाइश,
2: हेलो फरमाइश,
0: हेलो फरमाइश।
3: गीत सिर्फ सुरों का संगम नहीं होते, ये तो एहसासों की जुबान होते हैं। कभी मुस्कान बनकर होंठों पर सजते हैं तो कभी याद बनकर दिल में उतर जाते हैं। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा लाइव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मैं हूं देवकी और अब अगले एक घंटे तक आपके फोन कॉल्स, आपकी प्यारी फरमाइशें और आपकी पसंदीदा फिल्म गीत इस महफिल को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, उठाइए फोन, हमसे जुड़िए नंबर 2325400 और 2325588 पर। नंबर एक बार पुनः बता दूं, 2325400 और 2325588, और अपने प्रियजनों के लिए भेजिए प्यार भरे संदेश। तो चलिए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं आज के इस सुरीले महफिल की। हेलो फरमाइश।
4: जय माता दी।
3: जय माता दी, कौन बोल रहे हैं, कहां से आपने कॉल किया है हमें?
4: मेरा नाम है पूरन वर्मा जी, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंतमल बुगला
3: जी। कैसे हैं आप?
4: बस मैडम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो और वहाँ का मौसम कैसा हो रहा है?
3: हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं और मौसम कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है। और आपके वहाँ?
4: यहाँ भी ऐसा है
3: जी
4: मैडम, यहाँ भी ऐसा है मौसम का। दो तीन दिन पहले बारिश हुई थी और अभी तो धूप है मैडम, अच्छी खास।
3: जी जी जी, चलिए। तो ऐसे मौसम में कौन सा गीत सुनने का सोच रखा है आपने?
4: जी मैडम, फिल्म का नाम रहेगा अखियों से गोली मारे, पट्टे को संभाल सोनी गाना।
3: अच्छा, तो चलिए मिलकर सुनते हैं ये गीत।
4: दोस्तों को याद कर सकते हैं?
3: जरूर
4: जी मैडम। सबसे पहले आप है
3: जी,
4: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह जी है, अविनाश जी है, रमेश पात्र है, विमल है, अमल है, धर्मवीर जी है, पूर्णिमा मैडम है, और आशुतोष देवनाथ, संगीता जी, और जितने भी कॉलर लाइव आपसे जुड़ेंगे, तमाम श्रोता जिसका भी नाम लेना भूल गया उन कॉलरों के।
3: चलिए, आपके तमाम दोस्तों के साथ मेरे साथ मिलकर सुनते हैं ये गाना। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका वर्मा जी।
4: थैंक यू मैडम, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश, गुड मॉर्निंग
0: जी। गुड मॉर्निंग
1: जी, मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ।
0: जी,
1: गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, क्षेत्रीय भूमि असम से तालुका से है ना।
0: चलिए अनूप जी बताइए, वहाँ मौसम कैसा है इस वक्त?
1: मौसम तो भी क्या कहो, मतलब आखिर तक क्या हुआ, नहीं बारिश तो हो रहा है, बारिश हो रहा है और बारिश इतना मेन स्ट्रीमली नहीं हुआ, इतना हल्का फुल्का बारिश हो रहा है और मौसम भी गर्मी से थोड़ा
0: राहत मिली,
1: बाकी राहत मिल गए।
0: चलिए,
1: और काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई है ना, जिंदगी जियो इस कदर।

0: साफ बन जाए, है ना।
1: चलिए,
0: और बहुत अच्छा लगता है जब आकाशवाणी श्री विजयपुरम में फोन लग जाता है तो बाकी एकदम तक दिल एकदम फुट हो जाते है सुकून से।
1: चलिए, आपकी खुशी को और दुगना करते हुए आप जानना चाहेंगे कि कौन सा गीत है जो आज सुनना चाहेंगे?
0: जी, आज ही गाना सुना दीजिए। फिल्म का नाम है सिलसिला
1: जी,
0: और गाने का बोले से नीलासमा हो गया, ऐसे करके गाने। कुछ दोस्तों को मैं फटाफट नाम लेता हूँ
1: जी, जरूर।
0: पहले है हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे बसंतीला सूर्यवंशी जी, अविनाश भाई, प्रेमजीत चक्रवर्ती जी है, अमर सिंह साहू जी, और सप्तमी जी है, शिप्रा जी है, और मध्य प्रदेश से हमारे बबीता बागेल जी है, लोकेंद्र जी है, और तो अभी सुन रहे हैं सबके लिए और आपके लिए।
1: चलिए, तो हम सभी मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का सिलसिला मूवी का ये गीत, सुनिएगा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, आपका नाम बता दीजिए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं ये भी बता दीजिए।
1: मैं आशुतोष देवनाथ त्रिपुरा से बोल रहा हूँ।
0: जी चलिए जल्दी से बता दीजिए, कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: मैम जी, आज मुझे सुना दीजिए, 1984 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है झूठा साच, और गाने का बोल है कैसी लग रही हूँ मैं।
0: जी जी,
1: लता जी किशोर दा ने गाया है, मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा है और आरडी बर्मन जी ने सुर से सजा इस गाने को।
0: जी बहुत खूब, तो मिलकर सुनिए ये गाना।
1: मैम जी, पहले आपको सुनाना चाहता हूँ, और विजयपुरम से पूर्णिमा दीदी, मोनिका दीदी और सप्तमी विष्णु दीदी, और मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार, प्रेम सिंह भैया, रमेश प्रजापति जी और संदीप नामदेव, और केसरी सिंह भैया, राम बाबू शर्मा, और राकेश जी शिमला से, पूरन वर्मा और मांगीलाल, और नेटवर्क का सारे श्रोताओं को लेकर सुनना।
0: चलिए तो अब ये गीत आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं, सुनिएगा।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते
0: जी। नमस्ते, अपना नाम बता दीजिए।
1: जी। प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: जी बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: क्या कर रहे थे इस वक्त आप?
1: जी इस वक्त हम खेत पर हैं, खेत में कुछ काम कर रहे हैं, खरपतवार निकालने का।
0: अच्छा, तो इस अभी खेतों में कुछ बोया नहीं है आपने?
1: नहीं, सोयाबीन की फसल लगाई है,
0: अच्छा
1: तो उसमें मतलब खरपतवार हो जाता है ना,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: उसको
0: जी
1: मतलब
0: जी
1: निकाल रहे हैं मजदूर द्वारा।
0: जी जी चलिए, तो
1: जी
0: काम भी चल रहे हैं और गीत भी आप सुन रहे हैं।
1: मोबाइल पर आपका कार्यक्रम भी सुन रहा हूँ साथ में।
0: हाँ हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। और उज्जैन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। वैसे तो काफ़ी प्रसिद्ध है उज्जैन शहर, लेकिन आपके आपके मुंह से हम जानना चाहेंगे कि उज्जैन कैसा है, आपको रहते हुए वहाँ कैसा लगता है।
1: जी बिल्कुल बताना चाहेंगे।
0: जी
1: उज्जैन में श्री महाकालेश्वर बाबा का मंदिर बना हुआ है,
0: जी
1: और साथ में महाकालेश्वर बाबा के साथ में बहुत सारे मंदिर है, हर सिद्धि माँ का मंदिर है, चार धाम मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है, गोपालनाथ जी का मंदिर है, इस्कान मंदिर है, घंटाघर है,
0: जी
1: और ऐसे मतलब बहुत सारी सुविधा है। सड़कें चौड़ी कर दी गई है वहाँ पर जी। और
0: चलिए।
1: जैसे कि आपको बताऊँ, सावन महीना शुरू होगा ना, तो दूर दूर से कांवड़ यात्री मतलब बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए आएंगे।
0: तो इतने खूबसूरत शहर से आपने कॉल किया है, तो बता दीजिए कौन सा गीत है जो आज सुनेंगे इस प्रोग्राम में?
1: वादा फिल्म का सुनवा दीजिएगा, ये वादा रहा प्यार से प्यार सब कम होंगे ना जुदा,
0: फिर से बता दीजिए।
1: फिल्म का नाम है वादा और गाने के बोले ये वादा रहा प्यार का प्यार।
0: अच्छा ठीक है, हम आपको ज़रूर सुनाएंगे ये गीत, सुनेगा।
1: जी थैंक यू सो मच।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, आपका नाम बता दीजिए।
1: मेरा नाम धीरज जबारी है, गांव का नाम है डेर, तहसील जिला पाटन, गुजरात से आपका नियमित श्रोता बात कर रहा हूँ।
0: चलिए, हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और अब जल्दी से बता दीजिए कि प्रोग्राम में आज कौन सा गीत सुनना है आपको।
1: फिल्म का नाम है फकीरा और गाने के बोल है दिल में तुझे बिठाकर, गाया है लता मंगेशकर ने।
0: जी चलिए, तो मिलकर सुनिए ये गाना।
1: जी जी, और आप सभी कुशल होंगे और हमको आपके कार्यक्रम सभी पसंद आते हैं।
0: आप सभी की दुआ है, हम यहाँ कुशल मंगल हैं और इस वक्त आपके फरमाइशी गीत के लिए यहाँ पर हाजिर हैं, तो सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर ये गाना। चलिए सुनते हैं।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैम महाकाल।
0: हेलो फरमाइश।
1: मैम जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल जी, आपका नाम जानना चाहेंगे?
1: मैम लोहर, एमपी विदिशा कर रहा हूँ। मैम
0: एमपी से कौन बात कर रहे हैं? एक्चुअली आपका आवाज़ थोड़ा कट रहा है।
1: शिवा लोहर बात कर रहा हूँ मैं, एमपी।
0: अच्छा, शिवा लोहर जी बोल रहे हैं। जी जी जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आपका नाम सुन के मुझे याद आया कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, है ना? समाज की सेवा करते हैं। जी जी, तो आज इस कार्यक्रम में आप जुड़े हैं शिवा जी, बताइए किस तरह से हम आपकी सेवा कर सकते हैं? कौन सा गीत सुनेंगे बताइए, आपकी सेवा में कौन सा गीत प्रस्तुत करें?
1: गीत रहेगा, मूवी का नाम रहेगा श्रीमान आशिक, और उसमें कुमार सानू अलका याग्निक जी की आवाज में गाना रहेगा, चूम लूं और तेरे दिल की यही ख्वाहिश है, बात ये मेरी नहीं प्यार की अजमाइश।
0: जी जी, जरूर सुनवाएंगे ये गीत। और बताइए आपके काम को करते हुए आपको कैसा लगता है?
1: मैम काम को करते हुए बहुत अच्छा लगता है, जब लोग बाग हमको प्रेरणा देते हैं और लोग बाग बोलते हैं कि हमारे जरिए और लोग जुड़ते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: चलिए, तो अब शिवा जी सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत, सुनिएगा आपकी फरमाइश।
1: जी थैंक यू,
0: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, आपका शुभ नाम बता दीजिए।
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी, परमार जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, बढ़िया हैं। अभी हमारे इधर बारिश नहीं हो रही 4 दिनों से दीदी, मौसम खुला हुआ है।
0: चलिए, अच्छी बात है। और इस खुले खुले मौसम में कौन सा गीत है जो आज सुनना चाहेंगे और सुनाना चाहेंगे?
1: दीदी मैं पहले अपने दोस्तों का नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ, जल्दी से ले लीजिए।
1: पहले तो पूर्णिमा दीदी है विजयपुरम से, तनुश्री बिटिया जी हैं, सावनकर गंगाधर जी हैं, गजराज लोधी जी, केशव राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी हैं, रमेश प्रजापति हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, राकेश जी हैं, बहन संगीता देवनाथ जी, अशोक देवनाथ जी, अविनाश तेली जी, पूरन वर्मा जी हैं, और गोल्डी जी हैं, शिवा लोहट जी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी, और सभी दोस्तों को डेडिकेट रही लाइव सुना आपको भी।
0: चलिए, गाना तो बता दीजिए।
1: और फिल्म का नाम है दीदी सनम, और गाने के बोले इसमें मेरे रब्बा जाने में क्या कर जाता।
0: जी, बहुत ही खूबसूरत गीत है, अपने इन तमाम दोस्तों के साथ मिलकर सुनिएगा ये गाना।
1: धन्यवाद दीदी।

0: हेलो फरमाइश।
1: मेरे प्यारी प्यारी मैम को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग जी, ये प्यारी सी आवाज किसकी है?
1: मैं ग्राम बनोरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री जी, कैसी हैं आप?
1: जी मैम, ये बहुत बढ़िया, और आपसे बात हुई तो और भी बढ़िया हो गई।
0: चलिए चलिए, आपकी खुशी हम तक पहुंच रही है। और तनुश्री, आपके बारे में जानना चाहेंगे हम।
1: जी मैम, मुझे 10वीं से दिखाई नहीं देता, तब से मैं शास्त्रीय संगीत की पढ़ाई कर रही हूँ।
0: अच्छा, शास्त्रीय संगीत सीख रही हैं आप।
1: जी मैम जी।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा जानकर। और बताइए अपने बारे में कुछ और।
1: मैम कुछ नहीं, घर में रहती हूँ, क्योंकि अभी दिखाई नहीं देता तो बाहर जा नहीं पाती, इसलिए घर में ही पापा ने मुझे शास्त्रीय संगीत का क्लास लगा रखा है, तो यही मन से मैं करती हूँ।
0: हाँ, कुछ सुनाएंगे हमें?
1: जी मैम, पहले तो दोस्तों का नाम लेती हूँ और फिल्म का नाम बताते और सुनाती हूँ।
0: अच्छा ठीक है, चलिए।
1: पहले तो हमारे सी विजयपुरम से एक प्यारी सी श्रोता है जिसका नाम है पूर्णिमा जी, उनको ये गाना खास कर डेडिकेट मैम रहेगा, क्योंकि उन्हें भी दिखाई नहीं देता तो उनको डेडिकेट रहेगा। भगवान सिंह परमार जी है, राकेश जी है, रवीना जी है, प्रेम सिंह सिसोदिया जी है, गंगाधर सावंतकर, इन सबके साथ सुनूंगी। और गाने के फिल्म का नाम है पापा के बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ, और पापा को भी डेट कैसे रहेगा।
0: अच्छा, तो चलिए तनुश्री जी, आपकी खुशी को दुगना करते हैं और सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत, अपना जो कार्य है, जो आपके पापा ने आपको शास्त्रीय संगीत का जो क्लास लगाया, अच्छे से करिए। आपको बहुत शुभकामनाएं, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा।
1: ओके, बाय बाय
0: बाय।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम हेलो फरमाइश यहीं तक। आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद जिन्होंने अपने कॉल्स, संदेश और फरमाइशों से इस महफिल को खूबसूरत बनाया। यदि किसी की फरमाइश आज शामिल नहीं हो सकी तो निराश ना हो, अगली प्रस्तुति में फिर से आपसे जुड़िए, हमसे जुड़िए, क्योंकि आपकी फरमाइशें ही इस कार्यक्रम की असली पहचान है। अब हम आपसे विदा लेते हैं, पर जाने से पहले महफिलें यूं ही सजती रहें, सुर यूं ही गूंजते रहें, जिंदगी की राहों में मुस्कुराहटों के फूल खिलते रहें। तो श्रोताओं, अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम जनता जंक्शन।

0: Junction. जहां तिरंगा लहराता है वहां केवल एक ध्वज नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय के सपने, त्याग और स्वाभिमान लहराते हैं। श्रोताओं, जनता जंक्शन कार्यक्रम में आज हम आपको लिए चलते हैं पावन धरती फ्लैग पॉइंट श्री विजयपुरम पर, जहां भारत के अमर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय तिरंगे को फहराकर स्वतंत्र भारत के स्वप्न को नई ऊर्जा प्रदान की। ये स्थान केवल एक स्मारक नहीं बल्कि बलिदान और आत्मसम्मान का जीवंत प्रतीक है। आइए चलते हैं।
1: दोस्तों, समुद्र के किनारे स्थित फ्लैग पॉइंट श्री विजयपुरम की सबसे आकर्षक जगहों में से एक है, तो चलिए यहाँ आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों से जानते हैं कि आखिर इस जगह की कौन सी बात लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। हेलो मैम, आपका नाम?
2: मेरा नाम रितु शर्मा है।
1: और आप कहाँ से आए हैं?
2: मैं बैंगलोर के लक्षंद्रा सिटी से हूँ
1: जी। तो अंडमान का अब तक का आपका अनुभव कैसा रहा?
2: ये मेरा पहला विजिट है अंडमान में। यहाँ में मैं हस्बैंड के साथ आई थी। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और यहाँ का एटमोसफियर बहुत पीसफुल है एज़ कम्पेयर टू बैंगलोर।
1: अब तक आप लोग कहाँ कहाँ घूम चुके हैं?
2: जी, अब तक हमने म्यूज़ियम देखे, सेलुलर जेल विजिट किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड भी गए।
1: तो बताइए, आज आप यहाँ फ्लैग पॉइंट में आई हैं, यहाँ आकर आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी?
2: मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक ही जगह पर समंदर का व्यू और तिरंगा दोनों को

0: देखना मिलता है। ये जगह बहुत क्लीन और वेल मेंटेन्ड है, इसलिए मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी, यहाँ फ्लैग पॉइंट पर लिखा हुआ 1943 का क्या महत्व है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में, कुछ बता सकते हैं?
0: जी, मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं पे कि 1943 वो साल है जब 30 दिसंबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अंजुमान में पहली बार फ्लैग होस्ट किया था।
1: जी बिल्कुल, यही इतिहास इस जगह को और भी खास बनाता है। तो आपको क्या लगता है कि फ्लैग पॉइंट अंडमान आने वाले हर पर्यटक की मस्ट विजिट सूची में होना चाहिए, आप क्या सोचती हैं?
0: जी हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से अंडमान आने वाले हर टूरिस्ट को फ्लैग पॉइंट ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है और समंदर की जो ठंडी हवाएं चलती है, इसे देखकर बहुत अच्छा लगता है और इसका वो जो फील होता है फ्लैग को देख के, वो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी रितु जी, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने जो अपने विचार हमारे साथ साझा किए उसके लिए धन्यवाद। और अब अंत में आपका कोई मनपसंद गीत हो जिसे आप हमारे इस कार्यक्रम में सुनना चाहें?
0: जी जरूर, एक गाना है जो मेरा फेवरेट है, तुमको ना भूल पाएंगे मूवी से है, क्या हुआ तुझे।

0: दोस्तों आइए अब करते हैं बातें अगले पर्यटक से।
1: जी आपका शुभ नाम?
2: जी मेरा नाम वंश गुप्ता है।
1: जी आप कहाँ से हो सर?
2: जी मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ।
1: अच्छा आप वाराणसी से यहाँ घूमने आए हो?
2: जी।
1: तो कैसा लगा आपको अंडमान निकोबार आइलैंड?
2: जी मुझे अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत सुंदर लगा। मैं करीब 7 से 8 दिन से यहाँ हूँ, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी।
1: और हमारा ये फ्लैग होस्टिंग पॉइंट कैसा लगा सर आपको?
2: जी मेरा ये सबसे फेवरेट पार्ट है अंडमान निकोबार में, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी।
1: और हमारे पर्यटकों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या?
2: जी मैं सबसे निवेदन करूँगा कि सब एक ना एक बार अंडमान निकोबार आए, यहाँ घूमे, इसकी सुंदरता देखे। एंड ये बहुत ही सुंदर जगह है, मैं सबसे निवेदन करूँगा कि एक ना एक बार अपनी लाइफ में अंडमान निकोबार आए।
1: आपका कुछ मनपसंद गीत हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे क्या?
2: जी खुदा जाने।

0: जी बताइए, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं?
1: मैं फिरदौस एंड मैं यहाँ पर मिडिल पॉइंट पे रहती हूँ।
0: जी, तो क्या आपको लगता है कि फ्लैग पॉइंट जैसी जगहें लोगों को प्रकृति के करीब लाने में मदद कर सकती हैं और कैसे?
1: जी हाँ, लोग यहाँ की तरफ में अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। यहाँ की प्रकृति इतनी सुंदर है, यहाँ का वातावरण और यहाँ के बहती हुई पानी की लहरें जो हमें अपने पास बुलाती हैं, और यहाँ का नज़ारा जो हमें प्रेरणा देता है और ज़िंदगी की भाग दौड़ से एक शांत ज़िंदगी पर लाकर खड़ा करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।
0: और फ्लैग पॉइंट की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है?
1: मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पर मैं ज़्यादातर इसीलिए आती हूँ क्योंकि जब मैं पूरे हफ्ते थक जाती हूँ तो यहाँ आकर मुझे बहुत शांत महसूस होता है, और यहाँ की बहती हुई लहरों को सुनना, इस वेदर को बदलते हुए देखना, यहाँ पर बच्चे छोटे छोटे जो खेल रहे हैं उन्हें देखना, लोग दौड़ रहे हैं उन्हें देखना, लोगों का प्यार जानवरों की तरफ मुझे बहुत लुभाता है, इसीलिए मुझे फ्लैग पॉइंट बहुत अच्छा लगता है।

0: दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं फ्लैग होस्टिंग पॉइंट, जहां तिरंगे की शान हर भारतीयों के दिल में गर्व से भर देती है। आइए जानते हैं यहां आए लोगों के दिल में देश और तिरंगे को लेकर क्या भावनाएं हैं। हेलो,
1: हाय,
0: क्या नाम है मैडम आपका?
1: मेरा नाम सुष्मिता दास है।
0: जी सुष्मिता जी, आप यहां अक्सर आती हैं?
1: जी।
0: अच्छा सुष्मिता जी, जब तिरंगे लहराता है तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है?
1: इस तिरंगे को देखकर मुझे जो है हमारी आज़ादी का वक्त याद आता है। हमारे अंडमान में हमारा बहुत फेमस मॉन्यूमेंट भी है, जो हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हुए बनाए रखे हैं। उसका नाम है सेलुलर जेल, एंड सेलुलर जेल से ही मिलता जुलता जो है फ्लैग पॉइंट एक जगह है, जहाँ हमारे भारत देश में सबसे पहली बार तिरंगा लहराया गया था। तो इसी को याद करते हुए हम उसी के साथ साथ सामने हमारा बहुत ही अच्छा नज़ारा भी मिल रहा है, तो उसी के साथ साथ हम इस जगह को याद रखते हैं।
0: चलिए, आज के युवाओं को देश के लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: एज अ यंगस्टर ऑफ अंडमान, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है यंगस्टर्स पे, चाहे बच्चे किसी भी एज के क्यों ना हो, कितने ही छोटे क्यों ना हो, चाहे बूढ़े भी क्यों ना हो, अगर हो तो सभी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो यंगस्टर होने के नाते मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमें जो है वेस्टर्नाइज होना है, मॉडर्न होना है, लेकिन अपने जो है इंडियन कल्चर्स एंड रूट्स को पकड़े रखना है और अपने आगे जनरेशन तक फॉलो अप करते रहना है।
0: चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यदि आपको देश के नाम एक संदेश देना हो तो आप क्या कहेंगे?
1: मैं देश के लिए ये संदेश देना चाहूँगी कि आप यदि जो भी सोचते हैं वो अपने देश के खातिर सोचें। आप कभी देश के साथ गद्दारी ना करें। आप जो भी काम कर रहे हैं देश के लिए करें। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी।
0: सुष्मिता जी, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। आप हमारे श्रोताओं को कुछ मनपसंद गीत सुनाना चाहेंगे क्या?
1: तो गीत का मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगी कि अभी ना जाओ छोड़कर, ये गाना मुझे अच्छा लगा।
2: अभी ना जाओ छोड़कर,

0: जनता जंक्शन कार्यक्रम में आज फ्लैग पॉइंट श्री विजयपुरम में खड़े होकर हम करते हैं सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन, जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर हमें स्वतंत्र भारत का अमूल्य उपहार दिया। आज के इस कार्यक्रम में शामिल थे
1: मैं शिबानी,
2: मैं मीनू,
0: मैं गीता और मेरे साथी सुमित। तो अब चाहेंगे कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए गजल। फनकार हैं अनूप जलोटा। सबसे पहले सुनवा रहे हैं मुराद लखनवी का कलाम।
1: चश्मे पुर न

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए गजल। फनकार हैं अनुप जलोटा, सबसे पहले सुनवा रहे हैं मुराद लखनवी का कलाम।
1: चश्मे पूर्ण

हेलो, मैं हूं एचआईवी वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूं। मुझे उनसे दोस्ती करना बहुत पसंद है जो जाने अनजाने एक से ज्यादा साथियों के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करते हैं। ये किसी भी तरह के सेक्स में कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते। मैं तो उन पर भी नजर बनाकर रखता हूं जो अपने रेगुलर पार्टनर के साथ भी कॉन्डम नहीं लगाते, और जो नशे की हालत में दोस्तों के साथ एक ही सुई व सिरिंज का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन छोटी छोटी लापरवाहियों से मुझे उनके पास आने का मौका मिल जाता है। तो मैं हूं एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या?

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

0: ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ മലയാളം പരിപാടികൾ സമാപിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു. സ്നേഹപൂർവം, സുനിത ബാബുരാജ്.
1: അഭി ആപ് മലയാളം കാര്യക്രം സുൻ രഹി ഥേ. ഹം ആകാശവാണി കെ ശ്രീ വിജയപുരം കേന്ദ്ര സെ ബോൾ രഹി ഹേ. ദോപഹർ കെ ഏക് ബജ്നെ കോ ഹേ. അബ് സമാചാർ ഹമാരെ ദില്ലി കേന്ദ്ര സെ റിലേ കിയേ ജായേംഗേ. കൃപയാ പ്രതീക്ഷ കരേ.
2: ആകാശവാണി സമാചാർ കെ സാഥ് മൈ വിശാൽ ശർമ്മ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए. 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया. इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की. यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया. यात्रा के 3rd और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया. वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है. नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं.
3: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं. इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं. प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क. हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है.
2: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है. इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी.

0: मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। खतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। शेख हमद ने क्षेत्रीय परंपरा को तोड़ते हुए 2013 में स्वेच्छा से अपने पुत्र को सत्ता सौंपने से पहले 18 वर्षों तक कतर पर शासन किया। पेरिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोवक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला ड्राबोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after concluding a 6-day successful visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In the first leg of his 3-nation tour, Mr. Modi visited Indonesia from 6th to 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto. During this visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the Indonesian President and reviewed the progress made in the partnership. In the second leg of his tour, the Prime Minister travelled to Melbourne, Australia. Mr. Modi participated in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. During his visit, Prime Minister Modi also participated in the India-Australia CEOs Forum, where he addressed a gathering of top business leaders from both countries. On the third and last leg of his 3-nation visit, the Prime Minister visited Auckland from 10th to 11th of July at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Employees Provident Fund Organization, EPFO, has introduced the Amnesty Scheme 2026 in Indonesia from 6th to 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto. During this visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the Indonesian President and reviewed the progress made in the partnership. In the second leg of his tour, the Prime Minister travelled to Melbourne, Australia. Mr. Modi participated in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. During his visit, Prime Minister Modi also participated in the India-Australia CEOs Forum, where he addressed a gathering of top business leaders from both countries. On the third and last leg of his 3-nation visit, the Prime Minister visited Auckland from 10th to 11th of July at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Employees Provident Fund Organization, EPFO, has introduced the Amnesty Scheme 2026,

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं प्रणति देवी के गाने चंद ज्ञाने। श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 1:30 हुए हैं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम घर संसार।

बहनों, सपने किसी चमत्कार से पूरे नहीं होते हैं। सपनों को सच करने के लिए मजबूत संकल्प, सकारात्मक सोच के साथ साथ लगातार प्रयास करने की ज़रूरत होती है। नमस्कार प्यारी बहनों, इस सकारात्मक सुविचार के साथ आपकी सखी, आपकी दोस्त रीमा अरोड़ा आपका तहे दिल से स्वागत करती है। बहनों, सपने हम सभी देखते हैं और युवावस्था में इन सपनों को पूरा करने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और ऐसे में अगर कोई सहायक बनकर हमारे कौशल को पहचाने और निखारे तो सोने पे सुहागा हो जाए, है ना। और आप जानती हैं, युवाओं को रोज़गार, आजीविका और उद्यमिता के लिए आवश्यक तकनीकी और व्यवसायिक कौशल प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विश्व भर में प्रयास जारी हैं, और उनके इन्हीं प्रयासों को

आगे बढ़ाने की खातिर हर वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाओं से युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके या फिर वह खुद का काम शुरू कर सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके। बहनों, युवाओं की मदद करने के लिए सब हाजिर हैं, लेकिन मेहनत तो हमें ही करनी होगी, है ना? तो चलिए उन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और अपने सपनों को पढ़ देते हैं।

बहनों, हर वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है लोगों में जागरूकता फैलाना। और बहनों, इसी के चलते हमें मौका मिला एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी से बात करने का, जहां महिलाओं के अधिकारों के बारे में हमने उनसे कुछ बातें करी। तो आइए आपको उनसे हुई हमारी बातचीत सुनवाते हैं और जानते हैं महिलाओं के अधिकारों के बारे में कुछ खास बातें।

0: से या हस्बैंड के थ्रू, तो पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर को अप्रोच कर सकते हैं, वुमेन सेल में अप्रोच कर सकते हैं, शी कैन कम टू कोर्ट डायरेक्टली ऑल्सो, कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं मेंटेनेंस का। बट ये होना चाहिए कि ये जेन्यून केस हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। दूसरा, अगर आप कहीं वर्किंग वुमन हो, आपको आपके वर्क प्लेस में कोई हरासमेंट किया जा रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट जैसा कुछ हो रहा है वर्क प्लेस में, तो भी आप उसका कंप्लेंट कर सकते हो। उसके लिए कमिटी संगठित की गई है, डीसी साहब उसको लीड करते हैं अंडरमैन में, तो आप वो कर सकते हो। सपोज आप एक स्कूल गोइंग गर्ल हो या कॉलेज गोइंग गर्ल हो, आपको कोई छेड़खानी किया जा रहा है या कुछ बदतमीजी किया जा रहा है, यू कैन अप्रोच टू पुलिस ऑल्सो कि आईपीसी के धारा, पहले की जो धारा आईपीसी अभी बीएनएस जो बोल रहे हैं हम, उसके तहत आप उनके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हो। बट सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आप भी सही हो और आप साथ ही साथ अपने ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी एक्सेप्ट करके चल रहे हो। अब मान के चलिए कोई बुजुर्ग महिला है, वृद्ध महिला है, जिनका हस्बैंड का डेथ हो चुका है, वो एंड शी इज डिपेंडेंट अपॉन दी चिल्ड्रन, बच्चे उनको नहीं देख रहे हैं, तो वो भी कोर्ट में जाके मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे डीसी साहब के पास जा करके वो कंप्लेंट दे सकते हैं। अच्छा। जिसके तहत उनके फैमिली वालों को बुला करके एक प्री लिटिगेशन सेटलमेंट हो सकता है। अच्छा। ये हो सकता है। दूसरी, किसी शादीशुदा महिला को अगर घर से निकाल दिया गया है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत वो कोर्ट में आ सकते हैं, उनको रेसिडेंशियल भी देना होगा उनको और मेंटेनेंस भी देना होगा। अच्छा। तो जो हस्बैंड का स्टेटस है, इक्वली शी इज एंटाइटल्ड टू लिव दैट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वो एक चीज़ है।
1: आप इतने वर्षों से अंडमान में ये कार्य कर रहे हैं एक लॉयर के तौर पर, आपको किस तरह के केस महिलाओं से जुड़े हुए ज्यादा यहाँ देखने को मिलते हैं?
0: यहाँ पे मैडम ज्यादातर मेंटेनेंस का, और सच बात बताएं आपको तो रिसेंटली वी हैव एनकाउंटर्ड मोर डिवोर्स केसेस।
1: अच्छा।
0: पिछले 4-5 सालों में डिवोर्स के मैटर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और मेंटेनेंस का मैटर्स है, 498A का मैटर्स है डॉरी हरासमेंट का, 354 का है मोलेस्टेशन का मैटर्स है, देन बच्चों में ज़्यादातर आजकल पॉक्सो के मैटर्स आ रहे हैं। तो केसेस तो फीमेल्स अगेंस्ट फीमेल्स देर आर लॉट ऑफ केसेस, जैसे कि हरासमेंट एट वर्क प्लेस में कोई मैटर्स कभी इक्का दुक्का साल में एक आधा आ गया तो आ गया, अदरवाइज तो दिस ऑल मैटर्स आर रिलेटिंग टू मेंटेनेंस, डाउरी, ये सब का चल रहा है।
1: अच्छा, आपने कहा कि काफ़ी सारे डिवोर्स के मैटर्स आ रहे हैं, आप कुछ कारण बता सकते हैं इसका?
0: देखिए, अगर मैं गलत ना हूँ तो, सिंस आई एम ऑल्सो मैरिड, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जहाँ जो होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो कहीं कुछ कम दिख रहा है। हम अगर बैठ के काउंसलिंग भी करना चाहे तो वी फाइंड दैट कि पढ़े लिखे हैं हस्बैंड वाइफ दोनों, एंड दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद एनी सिचुएशन। कुछ इन लॉस का इंटरफेरेंस होता है, कुछ लड़की बच्चियों का पेरेंट्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है कि मेरी बच्ची है, उसको आपने कैसे डांट दिया या कैसे उसको आप काम करा रहे हो, तो लाइक आप एक सोशल लाइफ पूरा तरह से डिटैच हो गए हैं, एंड वी आर बेसिकली नाउ टू बोलते हैं ना टेक्नो से भी हो गया है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी को भी बिलीव इन टेक्नोलॉजी, वी गो थ्रू गूगल एंड वी सी कि क्या लॉज है मेरे फेवर में, बट वी डोंट सी द राइट्स अलॉन्ग विद द ड्यूटीज। तो यहाँ पे कहीं कुछ होता है, कहीं वाइफ थोड़ा ज़्यादा एजुकेटेड है, शी इज़ अर्निंग मोर, हस्बैंड का थोड़ा अर्निंग कम है, उसको लेके डिस्प्यूट चल रहे हैं। आई कैन ओनली रिक्वेस्ट एवरी वन जो सुन रहे हैं उनको कि देखिए, शादी का जो लाइफ होता है, फैमिली लाइफ, इट इज़ वेरी पायस रिलेशनशिप, आपको सेक्रीफाइस ही करना है बहुत हद तक, और जहाँ बच्चे हो जाते हैं तो देन आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू लीव अ कॉम्प्रोमाइज लाइफ, और आपको बच्चों को देख के जीना है। मगर आज के यंग जनरेशन नहीं, मैं अर्न कर रहा हूँ, वाइफ बोलेगी, हस्बैंड बोल रहा है मैं अर्न कर रहा हूँ, एक बच्चा मुझे दे दो, एक वाइफ को दे दो, बट उन बच्चों का मनोस्थिति को कोई नहीं समझ रहा है।
1: बिल्कुल सही।
0: और आजकल डिवोर्स के बाद में सबसे ज़्यादा मैटर जो आ रहे हैं वो गार्डियनशिप के आ रहे हैं, पेरेंट्स बच्चे को लेके कोर्ट में लेकर क्लेम मांगते हैं, मेरे को कस्टडी चाहिए। अब उस बच्चे का मनोस्थिति सोचिए जो 7-8 साल का है, जो कोर्ट में आ रहा है, उसको ये बोलने में मजबूर किया जा रहा है कि मैं माँ के साथ रहूं या पेरेंट्स के साथ रहूं,
1: फादर के साथ रहूं,
0: ये चीज है।
1: इसका मतलब बैलेंस जो है वो बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: बैलेंस कहीं हिल रहा है, इसलिए
0: हाँ, मॉडर्नाइजेशन में वी बिलीव इन मॉडर्नाइजेशन, दैट इज द डिफिकल्टी,
1: बट मॉडर्नाइजेशन का मतलब अपनी जड़ें छोड़ना तो नहीं।
0: हाँ नहीं, मैं वही बोला ना, जितना आप कल्चर से डिटैच हो गए ना, आप उतनी अपनी मॉरल ड्यूटीज को भूलते जाओ।
1: बिल्कुल सर, हमारे कानूनी जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, हमें कब उसकी कार्रवाई करनी चाहिए, ये एक महिला को कैसे पता चले?
0: देखिए, एक बात तो ये है कि आज के तारीख में महिलाओं और पुरुषों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है
1: जी।
0: दोनों वर्ग अपने अपने जगह पे काम करती है। अगर आप एक हाउसवाइफ भी देखो तो सुबह से शाम उनका पूरा जो दिनचर्या है वो घर का काम में ही लगा रहता है, तो इक्वली शी इज ऑल्सो सपोर्टिंग दी फैमिली। तो जहाँ पे आपको ये लगता है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है फैमिली में या आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, सपोज यू आर ए वर्किंग वूमेन, आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ स्लैंग कमेंट्स दिया जा रहा है, तो वेरी फर्स्ट मोमेंट जहाँ शुरू होता है वहीं पे आपको रिएक्ट करना है। वंस आप चुप

0: तो बहनों, आज महिलाओं के अधिकारों के बारे में कुछ खास बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट एंड सेक्रेटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार बार एसोसिएशन एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी। तो चलिए उनसे मुलाकात का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं महिलाओं के अधिकारों के बारे में। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश सर जी।
1: नमस्कार जी।
0: सर, हम आपसे बातचीत शुरू करें उसमें हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि महिलाओं के कानूनी तौर पर क्या-क्या अधिकार हैं।
1: मैडम, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हर अधिकार के साथ एक ड्यूटीज़ भी आती है। महिलाओं को ये भी
0: जी
1: समझना है कि हमारे अधिकार तो हैं, जैसे कि अगर कोई मैरिड महिला है, उसको कोई उत्पीड़न पहुँचाया जा रहा है, जैसे उनके इन लॉ

0: जाओगे तो या तो आप आदत डाल लोगे उस चीज़ को बर्दाश्त करने की, या तो फिर आप लेटर स्टेज में जाके आप कंप्लेंट करोगे जहाँ पे बहुत एग्रीवेटेड आपके संग में कुछ ऑफेंस हो जाए, आइदर फिजिकली कोई आपके संग कोई ऑफेंस हो जाए. तब तक के लिए आप क्यों वेट करते हो?
1: बिल्कुल
0: द
1: बिल्कुल
0: मोमेंट यू गेट एग्रीव्ड आपको कंप्लेंट. अब मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पुलिस को अप्रोच ना करके सोशल वेलफेयर में जा सकते हो, वहाँ पर बैठ के काउंसलिंग किया जाता है. यू कैन गो टू एनी एनजीओज, जैसे प्रयास हुआ, चाइल्ड हेल्पलाइन वगैरह जो हुआ, बच्चों के साथ कुछ हुआ तो चाइल्ड हेल्पलाइन में जा सकते हैं. आप नेगोशिएट कर सकते हो वहाँ पर बैठ के, वहाँ पर काउंसलिंग होता है. यू कैन गो टू वुमेन सेल ऑल्सो, वहाँ पर भी काउंसलिंग होता है केस रजिस्टर्ड होने के पहले. वंस देखिए, मैं एज ए एडवोकेट मुझे नहीं बोलना चाहिए कि केस मत रजिस्टर करो, बट एक बार केस रजिस्टर्ड होता है फैमिली मैटर्स में तो फिर फीमेल जेंडर एक ईगो में आ जाता है कि मेरे को कोर्ट और थाना चढ़ा दिए, अब सेटलमेंट
1: बिल्कुल
0: नहीं करना है. तो यू योर सेल्फ इज स्पॉइलिंग योर फैमिली लाइफ. तो थोड़ा सा आप अगर उसको काउंसलिंग करके, नेगोशिएट करके आप रिजॉल्व कर सकते हो तो प्लीज गो फॉर दैट इनिशिएटिव.
1: इसका मतलब सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए कि हमें किसी सोशल
0: जी
1: ऑर्गेनाइजेशन
0: जी
1: से
0: जी
1: कांटेक्ट
0: बिल्कुल
1: करना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: अगर आसानी से वो प्रॉब्लम
0: जी
1: सॉल्व हो सकती है तो बहुत अच्छी बात
0: बिल्कुल,
1: है।
0: क्योंकि वंस आप कोर्ट चढ़ जाते हो तो फिर लिटिगेशन में आ जाते हो तो फिर सभी यही सोचते हैं अब कोर्ट जो फैसला करेगा मैं वो देखूंगा.
1: सर एक और बात है कि उत्पीड़न जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है शारीरिक,
0: जी
1: उसके लिए तो काफी सारे लॉज हैं, और मानसिक उत्पीड़न भी एक होता है।
0: जी
1: तो इन दोनों के लॉज क्या अलग-अलग हैं हमारे कानून में?
0: एक्चुअल में देखिए मैडम, हरासमेंट फिजिकल मेंटल ये सब अलग अलग डिफाइन
1: हरासमेंट
0: किया गया
1: डिफाइन
0: हुआ है.
1: किया गया।
0: फिजिकली आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो जैसे आपको लेडी को हस्बैंड ने मारा या इन लॉज ने मारा, हॉस्पिटल गए, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, शी गेट ए डॉक्यूमेंट्स, उनको मारा गया, ये फिजिकल हरासमेंट हो गया. मेंटल क्रुअलिटी या हरासमेंट आप दिखा नहीं सकते हो, एक्सपोज
1: जी
0: नहीं कर
1: बिल्कुल
0: सकते हो, बट लॉज में ये चीज़ अनग्राफ्टेड है कि अगर घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर या ऑफिस रूम के अंदर कोई अगर मेंटल हरासमेंट होता है तो डेफिनेटली आपको एविडेंस नहीं मिलेगा.
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: वहाँ पे सॉलिटरी जो एविडेंस होता है विक्टिम का या लेडी का, उसको कोर्ट कंसिडर करता है. मगर वहाँ पे बात मैं फिर वही जैसे मैंने शुरुआत किया, इस बात में सच्चाई होनी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: तब जा करके आप जेन्यून केस लड़ रहे हो, आप सोसाइटी में बाकी महिलाओं के लिए आप मदद कर रहे हो. तो दोनों अलग अलग डिफाइन किया गया हुआ है.
1: मानसिक उत्पीड़न को भी समझना जरूरी है,
0: जी
1: इसका वो
0: बिल्कुल.
1: भी होता है
0: देखिए
1: सोसाइटी
0: मैडम,
1: में।
0: फिजिकल से ज़्यादा डेंजरस मेंटल क्रुएलिटी और हरासमेंट है, क्योंकि वहाँ पे आप मानसिक चोट दे रहे हो आदमी
1: जी
0: का, लेडी का, पूरा तरह से आप फिजिकली असॉल्ट ना करके उनका पूरा लाइफ स्पॉइल कर रहे हो. क्योंकि मेंटल हरासमेंट में ये होता है कि शी में गो टू डिप्रेशन, शी में गो फॉर कमिटिंग सुसाइड, कुछ भी हो सकता है डिप्रेशन में. तो आपने किसी को एक थप्पड़ जड़ दिया तो वो पेन 10 मिनट आधे घंटे रहेगा, बट ये जो होता है साइकोलॉजिकली इम्बेलेंस कर देता है.
1: तो वो उसको डिफाइन कैसे किया जाए कि ये मेंटल हरासमेंट ही है ये
0: आप
1: चीज?
0: उनका, आप वो फीमेल को देखोगे तो आप नॉर्मल बिहेवियर से कुछ अबनॉर्मल बिहेवियर रहेगा, आइदर शी बिकम मोर साइलेंट और शी विल बिकम मोर वायलेंट,
1: अच्छा
0: ये सिचुएशन है. तो इसीलिए मैंने बोला सोशल वेलफेयर हुआ, प्रयास हुआ, आप यहाँ पे अगर कंप्लेंट करते हो, जैसे किसी बेटी के साथ हुआ है, इन लॉज ने किया है, उनके पेरेंट्स को इनको अप्रोच करना है. पहले तो वो काउंसलिंग करेंगे, उनको समझाएंगे, और उस काउंसलिंग में उन लोग उस चीज़ को निकालेंगे कि इनके साथ हुआ क्या है, एंड देन दे विल कम टू द कंक्लूजन कि इसको रिजॉल्व कैसे करना है. आप पुलिस के पास जाते हो तो डायरेक्ट पुलिस के पास में काउंसलिंग का कोई स्कोप नहीं है, दे विल गो फॉर FIR. वंस कंप्लेंट हो गया तो देखिए आप क्या होता है, विक्टिम बन जाते हो, अगला आदमी एक्यूज बन जाता है, अब कॉम्प्रोमाइज कहाँ से होगा?
1: इसका मतलब ये समझना बहुत जरूरी है
0: जी
1: कि ये मतलब एक्चुअल में मानसिक उत्पीड़न है कि नहीं
0: नहीं
1: है,
0: है, ये
1: तो
0: डिफाइन
1: इसके
0: करना बहुत
1: लिए डिफाइन
0: जरूरी है.
1: करना
0: जी
1: बहुत
0: जी जी
1: जरूरी
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: एक और सवाल उठता है कि कब एक महिला को समझ जाना चाहिए कि अब मुझे कानून की सहायता लेनी है?
0: देखिए मैंने वही बोला कि महिला हो, बेटी हो या माँ हो, सबसे पहली बात है आपको इक्वल राइट है कि आप डिग्निटी से जी सकते हो, कोई आपका डिग्निटी हार्म नहीं कर सकता. जस्ट बिकॉज यू आर फीमेल आप वीकर सेक्शन नहीं हो आज के तारीख में. तो मेरा ये बोलना है कि किसी भी गलत के खिलाफ आपको आवाज़ उठाना है और जितना जल्द हो उतना जल्द उठाना है. मगर फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा स्टेज आ जाए जहां आपको थाने जाके ही कंप्लेंट करना है तो देन गो फॉर इट. जैसे किसी ने फिजिकली टच किया आपको, समबडी असोल्टेड यू, कोई आपको पीट रहा है या कोई आपको मतलब मोलेस्ट कर रहा है, तो उस स्टेज में आपको वुमेन सेल जाके, आपको
1: नहीं
0: सोशल
1: जरूरत
0: वेलफेयर
1: नहीं
0: जाके
1: है।
0: बोलने की जरूरत नहीं है. अब उस आदमी को उसके लैंग्वेज में सिखाना जरूरी है, एंड दैट इज द ओनली लैंग्वेज जहां आप जाके कंप्लेंट करते हो.
1: अच्छा, अब कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं को पता है कि हमारे क्या अधिकार है, लेकिन वो अधिकारों का दुरुपयोग भी कर लेते हैं, तो उस सिलसिले में क्या प्रावधान है हमारे
0: देखिए मैम,
1: पास?
0: यही मैं शुरुआत से यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि देखिए आपको राइट दिया गया है, आपको ड्यूटीज़ भी है उसके साथ.
1: जी जी बिल्कुल
0: अब मुझे लाइसेंस मिला है, मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, आई एम ड्राइविंग टू व्हीलर, मेरे को हेलमेट पहनना कंपलसरी है. अगर फोर व्हीलर

0: चला तो बेल्ट पहनना जरूरी है। फीमेल्स को राइट दिया गया है कि कुछ भी होगा दे कैन अप्रोच कोर्ट और दे कैन गो एनी वेयर, मगर आपका अप्रोच जेन्यून होना है। अगर आप समझ लीजिए किसी माँ ने कोई बेटी का पॉक्सो केस लॉन्च करवाया है कोर्ट को और ये पता चलता है कि अल्टीमेटली ये फॉल्स केस है, तो बच्ची को कुछ नहीं होगा बिकॉज शी इज अ माइनर, मगर उसकी माँ के ऊपर में केस हो सकता है।
1: अच्छा
0: सिमिलरली अगर कोई बहू ये केस करती है कि मेरे को सास ससुर और मेरे इन लॉज ने मारा पीटा है, या ये अल्टीमेटली इफ इट कम्स आउट कि ये झूठा केस है, तो एक्यूज जो उसका हस्बैंड जो है ही कैन फाइल अ डैमेज सूट,
1: अच्छा
0: ही कैन फाइल अ क्रिमिनल केस। तो प्रोविजंस है सभी जगह पे है,
1: प्रोविजंस है।
0: इवन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। अगर पता चलता है कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की लेडी ने गलत कंप्लेंट किया है, तो कमिटी उसके ऊपर फाइन इम्पोज कर सकती है।
1: इसका मतलब बैलेंस मेंटेन
0: जी
1: किया गया है
0: बिल्कुल किया
1: कानून
0: गया,
1: में।
0: बिल्कुल किया। पॉक्सो इज अ वेरी स्ट्रिंजेंट एक्ट, बट उसमें भी ये प्रावधान है कि अगर फॉल्स कंप्लेंट है तो देर इज अ प्रोविजन ऑफ पेनल्टी।
1: तो क्या इस तरह के केसेस हमारे यहाँ आते हैं हमारे द्वीपों में?
0: देखिए नॉर्मली एज एडवोकेट मैं बोलना चाहूंगा, आज के तारीख में डॉरी हरासमेंट या मेंटेनेंस का तो मैं नहीं बोलूंगा, क्यों, वो मैच्योर लेडी करते वाला केस है तो उनके संग कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। बट एज फार एज पॉक्सो इज रिलेटेड, ये एक रिवेंज का इंस्ट्रूमेंट बन गया है। माँ बाप का लड़ाई है, जमीन जायदाद का लड़ाई है, तो एक पॉक्सो केस हो गया। मगर उनको मैं आपके माध्यम से समझाना चाहूंगा कि जिस बच्ची का एज खेलने कूदने का है, स्कूल जाने का, आप उनको कोर्ट के डॉक में ला के विटनेस में खड़ा करते हो और उनको ये बताते हो कि ये आपका लिमिट है बेटा, आप किसी को भी ट्रैप कर सकते हो, तो आप सोसाइटी स्पॉइल कर रहे हो। यू आर गिविंग, यू आर सेटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल। आप सोसाइटी स्पॉइल कर रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो कि भाई आप अपनी बच्ची को रख के भी ये केस कर सकते हो। और उससे होता क्या मैडम कि जेन्यून जो केस होता है, जो विक्टिम बच्चियाँ होती है, हम भी उनको वही नज़र से देखते हैं कि ये
1: जी
0: झूठा
1: बिल्कुल
0: कंप्लेंट है,
1: बिल्कुल,
0: तो ये ना करे। और जो जेन्यून है वो फिर कानून अपने हिसाब से पनिशमेंट देगा, मैं
1: मतलब
0: तो कुछ
1: कानून
0: बोलने
1: में
0: के लिए।
1: प्रावधान हमारे पास है, हमारे पास अधिकार है,
0: जी
1: लेकिन हमारे जो
0: ड्यूटीज हैं हम
1: ड्यूटीज हैं
0: उसको
1: उसको समझना
0: प्रॉपरली
1: भी
0: फॉलो
1: बहुत
0: करना
1: जरूरी
0: है।
1: है।
0: जी
1: अब कार्यक्रम जो है वो महिलाओं से जुड़ा है,
0: जी जी
1: तो ऐसे में जितनी महिलाएं इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, एक वकील होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: देखिए मैडम, क्योंकि आई हैव ऑल्सो फैमिली, मेरी माँ है, सासू माँ है, बेटी है, मेरी वाइफ है, मेरी बहन है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं, जो माँ बहनें सुन रहे हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई आज के तारीख में आपको प्रताड़ित करे तो बर्दाश्त नहीं कीजिएगा, डेफिनेटली रिएक्ट कीजिए, मगर जेन्यून हो तभी रिएक्ट कीजिए। आप लोगों को भगवान ने एक शक्ति दिया है माँ बनने का, आप जन्म देते हो, आप परवरिश करते हो एक बच्चे का, वैसे ही आपको सोसाइटी को भी परवरिश करना है। आप जैसे नर्चर करोगे बच्चों को, जैसे बड़ा करोगे, जैसे समझाओगे, वैसे ही समाज अच्छा बनेगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि झूठा कोई भी कंप्लेंट ना करे, मगर आपको अगर वाकई में कोई प्रताड़ित कर रहा है तो छोड़ के भी ना दे। तो हम लोगों को ये चीज़ समझना है कि वी ऑल आर इक्वल, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि हम कोई ऐसा एग्रीवेटेड काम ना करें कि जिसके वजह से बाकी महिलाओं को भी सिर झुका के चलना पड़े।
1: बिल्कुल
0: और क्योंकि माँ हर बच्चे का एक पहला टीचर होती है, तो आप लोगों को भगवान ने बहुत सारा ताकत दिया है, बहुत सारा आशीर्वाद दिया है, उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करें और समाज को एक अच्छा बनाने की कोशिश करें।
1: ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, और मुझे उम्मीद है कि जो महिलाएं सुन रही हैं वो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने दायित्वों को भी समझेंगी, हम अपनी
0: जी
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझेंगी, और आपकी बातों से उनको ज़रूर मदद मिलेगी। तो
0: थैंक यू
1: आपने
0: जी,
1: अपना इतना कीमती समय इन्हें दिया और महिलाओं को इतना अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार जी।

बहनों, हमें आशा है कि एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी की बातों से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और आपने उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना होगा और आप अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी पहचानेंगी। तो चलिए अब यहाँ पे अपनी बातों को थोड़ा सा विराम देते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, 16 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रही है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के लिए हर साल नई लकड़ी के साथ रथ बनाए जाते हैं। यह यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होती है। 16 जुलाई को भगवान के आगमन के साथ इस यात्रा की शुरुआत होगी और 24 जुलाई को बहुधा यात्रा के साथ संपन्न होगी। बहनों, रथ यात्रा में तीन रथ होते हैं जो एक दूजे से भिन्न होते हैं और उनको पूरे पारंपरिक रूप से बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष कहलाता है, जो तीनों में सबसे बड़ा होता है और उसके 16 पहिए होते हैं और ये लाल और पीले रंग का होता है। इसके बाद 14 पहियों वाला श्री बलभद्र का रथ ताल ध्वज होता है, जिसे लाल और हरे रंग में रंगा जाता है। फिर आता है 12 पहियों वाला दर्प दलन या फिर देव दलन रथ, जो माता सुभद्रा का होता है। बहनों, हमारे द्वीपों में भी यह भव्य समारोह बड़ी ही धूमधाम से होता है, जो कि भाई बहन के अटूट प्रेम के रिश्ते को दर्शाता है। तो चलिए, इस समारोह का हम भी हिस्सा बने और रथ यात्रा में अपनी भागीदारी निभाएं।

तो बहनों, इसी के साथ हमारा आज का ये घर संसार का अंक यहीं समाप्त होता है। तो अब अपनी सखी, अपनी दोस्त रीमा अरोड़ा को दीजिए आज के अंक से इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार, ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: World number one Jannik Sinner will face Germany's Alexander Zverev in the men's singles final at 8:30 p.m. Indian Standard Time. Sinner booked his place in the title clash with a straight sets victory over Novak Djokovic, while Zverev entered his first Wimbledon final after defeating British wildcard Arthur Fairey. The women's doubles final will begin at 5:30 p.m. IST. In the FIFA World Cup, England booked their semi-final berth with a 2-1 extra time win over Norway, while Argentina entered the semi-final defeating Switzerland 3-1 this morning. In the first semi-final, France and Spain will face off on Wednesday. The match will kick off at 12:30 a.m. Indian Standard Time. France reached the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the quarter-finals, while Spain advanced with a hard-fought 2-1 victory over Belgium. The second semi-final will be played on Thursday between England and Argentina at 12:30 a.m. Indian time. The winners of the two semi-finals will meet in the FIFA World Cup final on July the 20th at New York, New Jersey Stadium. The losing teams will play the third place playoff on July the 19th in Miami. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. It has predicted heavy rainfall conditions at isolated places over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, East Uttar Pradesh, Gangetic West Bengal and Himachal Pradesh today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a six-month amnesty scheme for establishments operating private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है।

0: अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे EPFO के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: EPFO की एमिनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्य

0: के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
2: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
4: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। खतर के पूर्व अमीर

0: शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की ग्वो हन्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मलादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में
2: नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है और अब चलते चलते आपको बता दें मौसम का हाल। मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार द्वीपों में कहीं कहीं पर वर्षा हुई। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकतर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि तेज हवाओं के कारण वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलेंगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती हैं। ऐसे में समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को 8 से 14 तारीख तक के सूचना में बताया जाता है कि वे समुद्र में न जाएं। ये था मौसम का हाल।

अब प्राइमरी चैनल पर हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम के 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर। हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण अब उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब श्रोताओं प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम गीत लहरी। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं तुम मिले फिल्म का ये गाना नीरज श्रीधर की आवाज में। गीत कुमार का है, प्रीतम का संगीत है।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में आइए सुनते हैं कुछ कुछ होता है फिल्म का शीर्षक गीत, रचना समीर की, संगीत तैयार किया जतिन ललित ने।

0: मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: क्रॉप फिल्म में लीजिए सुनिए नीरज श्रीधर को।

हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए इश्क है तुमसे फिल्म का गाना, आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

0: जिसे हम अपना दोस्त समझते हैं।
1: अभी आपने नाज़िया हसनी की आवाज़ में ये एल्बम सॉन्ग सुना, और अब आखिर में लीजिए सुनिए बिड़ू और महेश को।

प्रोग्राम एल्बम टाइम्स अब यहीं समाप्त होता है। दोपहर बाद के 3:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

दोस्तों नमस्कार। मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जो कभी झील सी गहरी आंखों में उतरता है, कभी किसी की मुस्कान में अपना घर बना लेता है, और जब दिल इस एहसास को पहचान लेता है तो हर धड़कन एक नया गीत गुनगुनाने लगती है। तो आइए शुरुआत करते हैं उसी गीत से जिसमें किसी की मासूम अदाओं और झील सी आंखों का जादू दिल को अपनी ओर खींच लेता है।

किसी की एक नज़र, एक मुस्कान और एक अदा कई बार दिल पर ऐसा असर छोड़ जाती है कि इंसान हर पल उसी चेहरे में अपनी दुनिया तलाशने लगता है। फिर लगता है कि उस शख्स की हर बात में प्यार, अपनापन और दुआएं दुआएं बसी हैं।

जब दिल में मोहब्बत दस्तक देती है तो दुनिया पहले जैसी नहीं रहती। हर मौसम सुहाना लगने लगता है, हर धड़कन एक नई धुन छेड़ देती है। यही तो है प्यार का पहला जादू।

पहला प्यार अक्सर अनकहे जज्बातों का सफर होता है। नजरें किसी को ढूंढती रहती हैं, दिल हर आहट पर ठहर जाता है और इंतजार भी मीठा लगने लगता है।

फिर एक दिन वो पल भी आता है जब दिल यकीन से कह उठता है, अब ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि प्यार है।

इन्हीं प्यारे नगमों के साथ आज का ये संगीतमय सफर यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और यादगार गीतों और दिल को छू लेने वाली बातों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे है। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा की शुरुआत में सबसे पहले लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
2: सिलनाम निरोक रहमांग इंगरे तका लमक तेलंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्ज रामांगलंगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अंगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग।

0: please inviting program proposals in new producer, content creators, production houses, rights owner, hake aggregators. नि प्रसार भारती आकाशवाणी श्री वजीपुरम नहवे तेन ही ऐकी तरीगम प्रोग्राम मे प्रपोजल इंगम हाई क्वालिटी रेडियो प्रोग्राम्स इलांग इन मिने तलुए प्रपोजल गमराने रेवन्यू शेयरिंग मोड इन्ने द स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मोड गमलिनु ये ग्रेडियस मोड इन्ने तलुए प्रपोजल मिने तमिहोय नहमोल तु प्रोग्राम तसांगम रेडियो ड्रामास documentaries vine nyanu story in hang nyanu audio series hek nup ta heng inri ingam audio program interna music based program ni program ta hang nyu ne i elo ta on na ngam rocket minutes e na fancy in hek net anai have re minutes inri na koren yip the interested applicants ta ho chumkuren चा नाहक मिने तकी तु तंगा प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी तनेट कई निरनाई फैन उरेकु इन लाहन रे ने सबमिट मिने प्रपोजल रे ने प्रोग्राम अंटंगम एन आई पी पी नाहांग न्यूमिन नेलगम आकाशवाणी नेटवर्क होल रे तंगम नेशनल रीजनल हेक लोकल रेडियो स्टेशन न हाली लंग तंगम प्रसार भारती हेक आकाशवाणी इन रे इंगम पॉलिसी लेनगेन नुन मिने इनलांगेन मिने प्रोग्राम एग्रीमेंट कंडीशंस रेवेन्यू शेयरिंग हेक एयर ब्रॉडकास्ट कोड तंगम कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कोड यिप द एलिजिबल एप्लीकेंट न सबमिट मिने प्रपोजल रे नंग लेट द इन मिने फॉर्मेट न होलुरन तनुप डॉक्यूमेंट्स नेलगम ईमेल आईडी Who airport blair @prasarbharati.gov.in Minetaki to guidelines, hek application procedures are then he un archaka nailingam official websites ngam Prasar Bharati hek akashwani ngam last state submission minet proposal nasil ipteluana kahuk alango chulai jinget the net kainerana taful Nataki to na in he नेतकी तुन इन ही ताई उ इन ये हाये गेन उ ये मत मिहोय अम इन उ केत्र में उम हाये उन हाये रन नुभन एन में गिताहांग न्यू न मिजा इन तेन ही ए तारीख ए तहो लो नु लमक तेल नी आकाशवाणी हो ये ते हंगे तची द स्टोरी रहोन्य जार्ल्स निकोलस
1: heng taka aktakolo tarik meyang elon panam nelak tanyan ik tikirang pati in pi kuon ok umu ngai marong ik tawe ka anga ta tarik lekten oh napoyen wahi tanya ku hangka aktara ku ngamai na chu imre tak ngamin pi pari heng tak kameka tarong len napo ta tikirang ka ngai chang ak in pi anga ipati ak ma लक्तेन ओ नहो चुंग इन ए नकुम रान दाका पो ओ नहांग तर अका इक्सा ओ परी नेको तालक ngai ja thalang hat wanga ta yom ko talak na ko yet hat re hanang sa o na kile ngo re na harong ha ku o tara yak ka nga cho ak tarik ta kin le ngen re ta yom ko talak ko yet hat te nga nga ramalon nga ak ma ta ik ah pati o na rok re nga ngro ak ma यंग रो कंगोका कांगो रे मंतरायो कोरेन चिन मिन इरु केति ये अप रो केन लोन मे ngai ngro ak tarik heng hat rong ach fo anu ra ngoka at ho ke ten o chin in me ye chu heng hang hana to ko nya fo ro ri ro ak ma na hale no nga chang heng ren ak ro ngai ngro ak ma ti khol re ta to he an ni in ngo tarik fo ho yin ngai hang hirut katire tan hangen tal in tangka ngache ngro ak tarik tekin hu tanya re na tanui hat anai na fo tan heng tit ta ka phol chu nga chong harong ha ku re ai tara ngoka nga ngro ak ma ne ta ta kana tukulo ing panam isu apa nga ngro ak tarik

0: Tigak nyeme kwers el ngam sins luk church ikabangka kachal nun tahi mini hangi tin kuka. Hoi inga til nga ang ngesinda ngamu, hek inu re changrong ita kasahata, ita fan kain ro tala harap ngay yen.
1: श्रोताओं, अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 10वीं कड़ी।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Entrepreneur क्या होता है? Who is an entrepreneur? उद्यमी कौन है? उद्यमी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा में हुई है. एक उद्यमी वो होता है जो किसी उद्यम के जोखिम को व्यवस्थित, प्रबंधित और ग्रहण करता है. उद्यम एक उपक्रम है, विशेष रूप से एक जिसमें उत्पादन के न्यूनतम चार कारक अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी शामिल है. जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर एक व्यवसाय की कल्पना करता है, उपक्रम उद्यम स्थापित करने के लिए साहसिक निर्णय लेता है, उत्पादनों के विभिन्न कारकों को समन्वय करता है और इसे एक शुरुआत देता है. तो इसमें आर्थिक गतिविधि शुरू करने में जोखिम और नवाचार लेने की इच्छा शामिल है. उद्यमी व्यवसाय उद्यम के मालिक होते हैं जो पूंजी का निवेश योगदान करते हैं और व्यावसायिक जीवन के दौरान अनिश्चितताओं का जोखिम उठाते हैं. उद्यमी और उद्यम जुड़े हुए हैं. एक उद्यम की सफलता उद्यमी पर निर्भर करती है. वो एक्शन ओरिएंटेड और अत्यधिक प्रेरित है. उनके पास लाभ के लिए आवश्यक इनपुट संसाधन एकत्र करने के लिए, व्यावसायिक अवसरों का मूल्यांकन करना और सफलता की गारंटी के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने की क्षमता है. उद्यमी उत्पादन का मुख्य कारक है. वो नवचार उन्मुख है. वो उत्पाद के संबंध में निर्णय लेता है, अर्थात क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करे, कहाँ उत्पादन करे और उपभोक्ता कौन है या बाजार कहाँ है या किसके लिए उत्पादन करना है. ये उद्यमी है जो उत्पादन के सभी कारकों को जुटाकर उत्पादन प्रक्रिया शुरू करता है. यह व्यवसाय की सफलता या विफलता या लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार है. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं. हमारा नंबर है 09515227039. आई रिपीट 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com. एक उद्यमी जिसके पास उच्च स्तर की प्रशासनिक क्षमता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, संगठनात्मक कौशल, जिम्मेदारी की इच्छा, उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, लचीलापन, ऊर्जावान और मेहनती, दूरदर्शिता, साधन संपन्नता और चतुराई है, उद्यम चलाने में सफलता की बेहतर संभावना है. उद्यमी की व्यक्तित्व विशेषताएं एक सामान्य व्यक्ति या मनुष्य से काफी भिन्न होती है. ऐसी कुछ विशेषताएं जन्मजात होती है और कुछ अर्जित की जाती है. उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के तहत आमतौर पर आयोजित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों की मदद किसी व्यक्ति में लक्षणों को और विकास किया जा सकता है यदि वे कुछ हद तक उसमें मौजूद हो. दोस्तों, मैं अब उद्यमी बनने के गुण बताऊंगा, क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. एक उद्यमी बनने के लिए कुछ गुण आपके पास जन्मजात होते हैं और कुछ गुणों को आप अभ्यास करके और अपने अनुभवों के आधार पर विकसित कर सकते हैं. हम यहाँ एक उद्यमी बनने की योग्यता व गुणों के बारे में बता रहे हैं जिसे आप अपने अंदर विकसित करके एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. तो आइए उद्यमी के विभिन्न गुणों और विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से. सोचने की शक्ति. यदि आप ठीक से सोचने और विश्लेषण करने में सक्षम हैं तो इसका मतलब है कि आप एक उद्यमी बन सकते हैं. आप भी अपने बिजनेस को अरबों टर्नओवर में बदल सकते हैं. व्यापार करने के लिए पैसा ज़्यादा मायने नहीं रखता, आपकी सोचने और समझने की शक्ति अधिक मायने रखती है. इसीलिए

अपने आइडिया के बारे में सोचें, विश्लेषण करें और उसे लागू करें। निर्णय लेने की क्षमता। एक उद्यमी को व्यवसाय चलाने के लिए कई निर्णय लेने पड़ते हैं, इसीलिए आप में समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। सफल होने के लिए आपको सही समय और सही जगह पर निर्णय लेना होता है। यह क्षमता बिजनेस की यात्रा में आपका भविष्य तय करती है। निर्णय लेने की क्षमता एक उद्यमी की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जो उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलित निर्णय लेने में मदद करती है और विभिन्न बिजनेस आइडिया पर

0: निर्णय लेने की क्षमता एक उद्यमी की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जो उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलित निर्णय लेने में मदद करती है और विभिन्न बिजनेस आइडिया पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। यदि आपके अंदर पूरी सृष्टि और लोगों के लिए कुछ करने की भावना हो तो आप उद्यमी बन सकते हैं, क्योंकि सफलता प्राप्त करना उद्यमी का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। आप बिना सेवा भाव के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप समाज को कुछ अच्छा नहीं दे सकते। समाज को कुछ मूल्य दिए बिना आप एक सफल उद्यमी कैसे बन सकते हैं? इसीलिए लोगों के बारे में अच्छा सोचें और उन्हें कुछ वैल्यू दें। धैर्य रखना। धैर्य एक उद्यमी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जब भी आप एक उद्यमी बनने के बारे में सोचें, तो ये ध्यान रखें कि जब भी मैं उद्यमी बनूंगा, धैर्य रखूंगा। जीवन में भी इसका बहुत महत्व है। धैर्य के बिना उद्यमी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि यह पहला परीक्षा होता है और उसके बाद सफलता मिलती है। आपको धैर्य रखते हुए सीखते रहना होगा और बाजार की जरूरतों के अनुसार अपनी सेवाओं में सुधार करना होगा। कड़ी मेहनत करना। अगर आप में मेहनत और लगन की ताकत है तो आप उद्यमी बन सकते हैं। उद्यमी बनने के लिए यह सबसे जरूरी गुण है। कड़ी मेहनत के बिना आप उद्यमी नहीं बन सकते, क्योंकि उद्यमिता का दूसरा नाम मेहनत है। एंटरप्रेन्योरशिप आपसे 100% मांगती है। 100% दिए बिना आप इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप अपने मन में यह तय कर ले कि मुझे कड़ी मेहनत करनी है और सफल होना है। ईमानदारी रखना है। आप ईमानदार हैं, इसका मतलब है कि आप एक सफल उद्यमी बनने में सक्षम हैं। अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो आप निश्चित रूप में असफल होंगे और पैसे कमाने के लिए आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाएगा। ईमानदारी के बिना कोई भी व्यवसाय बाजार में अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इसलिए यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको ईमानदार बनना चाहिए। कुशल प्रबंधन। सफल उद्यमी वह है जो उद्यमी के सभी परिस्थितियों को सफलतापूर्वक संभाल सकता है। यह व्यवसाय का नियम है कि प्रबंधन जितना बेहतर होगा उतना ही अधिक अच्छा प्रदर्शन और विकास होगा। उद्यमिता की नींव बिजनेस प्रशंसा और प्रबंधन पर टिकी हुई है। यदि आपका व्यवसाय अच्छा है लेकिन इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो ये निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। इसीलिए प्रबंधन कौशल में सुधार करें। मिलकर काम करने की शक्ति। एक सफल उद्यमी वह है जो अपने सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करता है, उनके सुख दुख में सहायक बनता है, सभी को अपने परिवार के सदस्यों की तरह मानता है और सभी के साथ मिलकर काम करता है। परिस्थितियों के अनुसार बदलना। एक उद्यमी हमेशा परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो निश्चित रूप से अधिक प्रतिस्पर्धा या नई तकनीक के कारण असफल हो जाएगा। कुशल नेतृत्व। एक सफल उद्यमी की पहचान उसकी नेतृत्व योग्यता है। एक सफल उद्यमी वो है जो सही समय और सही जगह पर सही निर्णय लेता है। नेतृत्व गुण हर इंसान में होता है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने वाला और साथ मिलकर काम करने वाला व्यक्ति ही एक वास्तविक उद्यमी होता है। अगर आप में ये उद्यमशीलता की योग्यता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में ये गुण नहीं है तो आप सीखकर और अभ्यास करके इसे अपना सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। With this, we conclude today's program. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye.
1: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat, feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 10वीं कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब सुनते हैं आज व कल प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों का विवरण।

सबसे पहले आज की शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम होगा। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। शाम 6 बजे आप सुन सकते हैं व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत संगिनी। 6:30 पर धरती के गीत कार्यक्रम के तहत पेश किए जाएंगे छोटा नागपुरी लोकगीत। 6:45 पर देशगान। 7:05 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचार बुलेटिन, मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाओं से अवगत कराया जाएगा संध्या 7:15 पर। आज संध्या 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया के तहत फिल्मी गीत। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा 7:30, जिसमें आज लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स का आनंद आप ले सकते हैं। रात 8 बजे आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। 8:30 पर रोजगार समाचार और चंद देशभक्ति गीत पेश किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में कुमार मुदुरुर का गायन होगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे आप FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत भी सुन सकते हैं, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। रात 11 बजे मौसम की जानकारी के बाद हमारी दूसरी सभा की समाप्ति होगी। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

श्रोताओं, आप सुनते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। 5:55 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम एग्री टिप्स, जिसमें कल जानकारी का विषय रहेगा धान के कीट। 6:10 पर जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। 6:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष, जो केंद्रित होगा आसू शीर्षक पर। रामचरितमानस गान की 347वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। 6:40 पर समाचार वार्ता। 6:45 पर मौसम की सुनिए वतन के गीत। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। 7:15 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागनी। इसी समय FM 100.9 MHz पर आप प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत भी सुन सकते हैं, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। 7:30 पर कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग अंडमान, जो मीडियम वेव और FM 100.9 MHz दोनों पर प्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह आप 8:30 पर सुन सकते हैं बेगम अख्तर का गायन। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का आनंद लीजिए कल सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में PCR व्यास का हिंदुस्तानी शैली में गायन गुर्जरी तोड़ी पेश किया जाएगा। 10:00 आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत गाता चल का। 11:00 का समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का, जिसमें कल 1326वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। एक ही कलाकार कार्यक्रम के तहत कल 11:30 पर सुनिए कतिल शिफाई के गाए गीत। 12:00 तेलुगु कार्यक्रम। 12:30 का समय रहेगा मलयालम कार्यक्रम का। समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिलमिल गाए आप सुन सकते हैं कल 1:10 पर। 1:30 आपके नाम फिल्मी पैगाम व्हाट्सएप पर आधारित ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे FM 100.9 MHz पर हमारे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स के संग।

बजकर 30 मिनट पर बोलते नगमों का कार्यक्रम होगा। यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें कल फनकार होंगे फरीदा खानम और जगजीत सिंह। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुन सकते हैं 4:45 पर। 5 बजे तमिल कार्यक्रम, 5:30 पर बंगला कार्यक्रम होगा। 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम होगा, जिसमें कल बातचीत होगी धान की बुआई विषय पर एन बोमैया स्वामी से। रिमिक्स गीतों का कार्यक्रम पॉप मसाला का समय रहेगा 6:30। 7:05 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन, मौसम की जानकारी और जलयानों का यात्रा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 7:15 पर। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 7:30 का समय रहेगा युवाणी का। श्रोताओं, ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। इस समय शाम के 4:45 हुए हैं और अब समय है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम बहारों की शाम का।

इस गीत को हमने लिया है लम्हे फिल्म से। स्वर लता मंगेशकर का, गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत शिवहरि का।

अगली पेशकश उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में, गीत रचना मजरू की और संगीत जतिन ललित का। इस गीत को हमने लिया है जो जीता वही सिकंदर फिल्म से।

श्रोताओं, आप सुनते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश जो हमने ली है, क्या कूल है हम फिल्म से। आवाजें शान और सुनिधि चौहान की, गीत रचना समीर की और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे है और अब समय है व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम संगीत संगनी का।

नमस्कार दोस्तों, संगीत संगिनी कार्यक्रम में मैं मंजीत आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का है और इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं महिलाओं की फरमाइशों को। तो सखियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने पसंद के गीत सुनने के लिए आप हमें व्हाट्सएप संदेश जरूर भेजें। संदेश भेजने के लिए हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर दोहरा रही हूँ सखियों, 9474234000। संदेश भेजते समय अपना नाम और पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल जरूर लिखें। हर रविवार इसी समय यानी संध्या 6 बजे हम आपकी फरमाइशों को संजोकर पेश करेंगे आपका अपना कार्यक्रम संगीत संगनी।

तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं हेलो ब्रदर फिल्म का गीत। इस गीत की फरमाइश की है सिप्पी घाट से राधिका देवी ने।

अब सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में सपने साजन के फिल्म का गीत। इस गीत की फरमाइश करने वाली है हैडो फिशरमैन कॉलोनी से चंद्रकला वती।

इस समय आप सुन रहे हैं कुमार सानू की आवाज में जान तेरे नाम फिल्म का गीत। इस गीत की फरमाइश की है छोलदरी लाल पहाड़ से रजनी देवी ने।

अगली पेशकश कैंपबेल से सरबजीत कौर की फरमाइश पर शक्ति फिल्म का गीत, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: आई लव यू।
2: यहाँ

इस गीत के साथ ही सखियों, मैं आपके फरमाइशी गीतों के सिलसिले को यहीं विराम देती हूँ। अगले रविवार संध्या 6 बजे हम आपके संदेशों के जरिए आपके पसंद के गीत लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप संगीत संगिनी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब सुनते हैं धरती के गीत कार्यक्रम के तहत छोटा नागपुरी लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप धरती के गीत कार्यक्रम के तहत छोटा नागपुरी लोकगीत सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। अब सुनते हैं देशगान।

ईपी के अंतर्गत कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रस्ताव इन तीन श्रेणियों में आमंत्रित किए गए हैं: राजस्व साझेदारी, प्रायोजित कार्यक्रम तथा निशुल्क मोड। कार्यक्रमों में रेडियो नाटक, वृत्तचित्र, कहानी वाचन, ऑडियो श्रृंखला, नवाचारी ऑडियो प्रारूप, ब्रॉडकास्ट, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता तथा संगीत आधारित कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम हिंदी में होगा और प्रत्येक एपिसोड की अवधि 14 या 28 मिनट तक होनी चाहिए। इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले प्रसार भारती तथा उसके नवीनतम संशोधन को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इस नीति में पात्रता, कार्यक्रम संबंधी दिशा निर्देश, अनुबंध की शर्तें, राजस्व साझेदारी, आकाशवाणी प्रसारण संहिता तथा वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। पात्र आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक विवरण एवं सहायक दस्तावेजों सहित अपना प्रस्ताव ईमेल hoorpoortblad@prasarbharti.gov.in पर भेज सकते हैं। विस्तृत दिशा निर्देश एवं आवेदन प्रतिक्रिया के लिए प्रसार भारती तथा आकाशवाणी की आधिकारिक वेबसाइट prasarbharti.gov.in/nipp तथा akashvani.gov.in/nipp.pdf देखें। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। यह सुनहरा अवसर न चूके अपने रचनात्मक कार्यक्रमों को भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारकता पहुंचाने के लिए आज ही अपना प्रस्ताव भेजें। ये थी आवश्यक सूचना।

एक आवश्यक सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी श्री विजयपुरम के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रेडियो कार्यक्रमों के चयन हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रण सूचना NIP

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनेंगे। इस छोटे से अंतराल के बाद
1: स्वच्छ गांव स्वस्थ जीवन, आइए मिलकर निभाएं अपनी जिम्मेदारी। गीला, सूखा, सैनिटरी और घरेलू खतरनाक कचरे को 4 भागों में अलग करें। कचरा न जलाएं, न इधर उधर फेंकें। अधिक जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-2739 पर संपर्क करें। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा जनहित में जारी।
2: दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना,
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ संबंधों को नई गति देने वाली 6 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले की भारत ने कड़ी निंदा करने के साथ ही ओमान सरकार का नागरिकों की सुरक्षा के लिए आभार व्यक्त किया। पर्यटन निदेशालय की ओर से मध्योत्तर अंडमान में स्कूबा डाइविंग के लिए 8 नए स्थलों की पहचान की गई। और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने MSME आइडिया हैकाथॉन 6.0 के लिए उम्मीदवारों से 14 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन जमा करने को कहा है।

सांध्य समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर 10 से 11 जुलाई तक ऑकलैंड का दौरा किया। न्यूजीलैंड की यह यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में पहली यात्रा थी। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत ने ओमान की सरकार का आभार व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर निर्बाध नौवहन और व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकट से निपटने के लिए कई पहल की है। देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। श्री चौहान ने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मिशन लाइफ जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के गैर CTT योग्य शिक्षकों की सुविधा के लिए शिक्षा विभाग की ओर से www.youtube.com/@siieofficial-an के माध्यम से दैनिक ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जा रही है। इस संबंध में आगामी CTET परीक्षा 2026 के लिए समय सारणी के अनुसार मॉक टेस्ट आयोजित किया जाएगा। मॉक टेस्ट 18 जुलाई से 29 अगस्त तक चलेगा। सभी गैर CTET योग्य शिक्षक परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। यह परीक्षा राज्य शिक्षा संस्थान के मार्गदर्शन में संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा आयोजित की जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है। स्कूबा डाइविंग और MSME आइडिया हैकाथॉन 6.0 के लिए आवेदन। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन निदेशालय की ओर से मध्योत्तर अंडमान के मायाबंदर और डिगलीपुर में स्कूबा डाइविंग के लिए 8 नए स्थलों की पहचान की गई है। चिन्हित स्थलों में मायाबंदर के नॉर्थ ऑफ साउंड आइलैंड रॉक मार्कर 077 और बोचांग, जबकि डिगलीपुर के हिरन टिकरी, लैंडफॉल ईस्ट, रॉस एंड स्मिथ का हाउस रीफ, पेजेंट आइलैंड तथा लैंडफॉल साउथ शामिल है। इनमें से अधिकांश स्थलों पर बोट डाइविंग तथा रॉस एंड स्मिथ में शोर डाइविंग की सुविधा उपलब्ध होगी। विभाग के अनुसार इस पहल से मध्योत्तर अंडमान में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब इन 8 नए स्थलों के जुड़ने से स्कूबा डाइविंग के कुल 12 अधिकृत स्थल हो गए हैं, जहां पर्यटक प्रवाल भित्तियों और समृद्ध समुद्री जैव विविधता का अनुभव ले सकेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों

0: असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। मंत्रालय ने बताया कि नामांकन awards.gov.in पोर्टल पर किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार कठिन परिस्थितियों में असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वालों को भी दिया जाता है। समाज कल्याण निदेशालय ने वर्ष 2026-27 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों से प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा ओबीसी छात्रों के लिए अतिरिक्त छात्रवृत्ति यूटी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी योजनाओं के लिए इच्छुक छात्र 31 अक्टूबर तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल scholarships.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह मंत्रालय की प्रमुख नवाचार पहल है जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक, एमएसएमई छात्र और अन्य श्रेणियों के अंतर्गत भाग ले सकते हैं। प्रतिभागी 6 विषयगत क्षेत्रों में अपने नवाचार संबंधी विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार my.msme.gov.in के माध्यम से 14 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। चयनित नवाचारों को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, इंक्यूबेशन सहायता तथा प्रत्येक स्वीकृत विचार के लिए अधिकतम 15 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मत्स्य पालन विभाग की ओर से वर्ष 2026-27 के लिए नए मोटर चालित मछली पकड़ने वाली नावों के निर्माण और खरीद के लिए सब्सिडी नामक केंद्र शासित प्रदेश योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के तहत सामान्य मछुआरों, बेरोजगार युवा, स्थानीय उद्यमियों और मत्स्य सहकारी समितियों के लिए इकाई लागत का 50%, जबकि अनुसूचित जनजाति और जनजातीय सहकारी समितियों के लिए इकाई लागत का 75% अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक का द्वीप समूह का मछुआरा होना अनिवार्य है। इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र और विस्तृत दिशा निर्देश मत्स्य निदेशालय, क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालयों या अपने निकटतम मत्स्य उपकेंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 15 जुलाई तक निकटतम क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालय या उपकेंद्रों पर जमा किए जा सकते हैं। कार निकोबार के जिला कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण ने विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता योजना के तहत अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। अधिसूचना के अनुसार ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के 2 और असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर के 6 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवार की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 30,000 और 25,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ 1 अगस्त तक कृषि सहायक निदेशक कार्यालय पिरका में जमा किए जा सकते हैं। पात्र उम्मीदवारों की सूची 7 अगस्त को जारी की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ संबंधों को नई गति देने वाली 6 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले की भारत ने कड़ी निंदा करने के साथ ही ओमान सरकार का नागरिकों की सुरक्षा के लिए आभार व्यक्त किया। पर्यटन निदेशालय की ओर से मध्य उत्तर अंडमान में स्कूबा डाइविंग के लिए 8 नए स्थलों की पहचान की गई। और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 के लिए उम्मीदवारों से 14 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन जमा करने को कहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन।
3: बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:16 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनते हैं मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं।

सबसे पहले सुनिए मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, पर मछुआरों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि समुद्री तटों पर हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहने तथा जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की भी संभावना है। इसलिए मछुआरों को 14 तारीख तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनते हैं जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

MV 12 कल 13 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिग्रीपुर के लिए रवाना होगा। इस जलयान की वापसी परसों 14 तारीख को सवेरे 7 बजे डिग्रीपुर से उसी बंदरगाह होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत 15 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिग्रीपुर के लिए अपनी यात्रा आरंभ करेगा। अगले दिन 16 तारीख को सवेरे 7 बजे ये जलयान डिग्रीपुर से छूटेगा और मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। MV रानीचंगा 17 तारीख को सवेरे 7 बजे इन्हीं मार्गों के लिए श्री विजयपुरम से छूटेगा। अगले दिन 18 तारीख को सवेरे 7 बजे डिग्रीपुर से मायाबंदर होते हुए वापसी करेगा। MV भारत सीमा 18 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिग्रीपुर जाएगा। अगले दिन 19 तारीख को दोपहर 2 बजे डिग्रीपुर से छूट कर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। MV कैंबल बे मंगलवार 14 तारीख को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा। उसी रात 9 बजे ये जलयान लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। यही जलयान 17 तारीख को रात 9 बजे भी श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा। अगले दिन 18 तारीख को सवेरे 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगा। इस जलयान यानी MV कैंबल बे की अगली यात्रा 19 तारीख को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए होगी। 19 तारीख को ही रात 9 बजे ये जलयान लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगा। MV हडवे 15 तारीख को सवेरे 6:30 पर श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए छूटेगा। दिन में 1 बजे ये जलयान लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए जलयान MV बम्बुका 16 तारीख को सुबह 6:30 पर रवाना होगा और इस जलयान की वापसी होगी उसी दिन 1 बजे। 15 तारीख को सवेरे 7 बजे लिटिल अंडमान से होते हुए कार निकोबार के लिए जलयान MV भारत सीमा श्री विजयपुरम से अपनी यात्रा आरंभ करेगा। अगले दिन 16 तारीख को शाम 4 बजे ये जलयान कार निकोबार से छूटेगा और उसी मार्ग से होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। MV कालीघाट 23 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तरासा कचाल और नानकौरी होते हुए कैंबल बे जाएगा। इस जलयान की वापसी 26 तारीख को दिन में 12 बजे कैंबल बे से इन सभी बंदरगाहों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। जलयान नालंदा 14 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान नानकौरी होते हुए कैंबल बे जाएगा। 16 तारीख को सुबह 8 बजे ये जलयान कैंबल बे से रवाना होगा और नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। इस जलयान की श्री विजयपुरम से नानकौरी होते हुए कैंबल बे के लिए अगली यात्राएँ 21 तारीख और 28 तारीख को भी होगी। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। अब सुनते हैं जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है।

जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। 112-03192-232-100, 03192-233-077 और 03192-232-400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। ये थी जन सूचनाएं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। इस समय संध्या के 7:20 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम का ये गीत हमने लिया है प्रतिकार फिल्म से। आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की, गीत रचना आनंद बख्शी की है और संगीत बप्पी लहरी का।

आशा भोसले की आवाज में बहरूपिया फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवाणी। इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस हमें यह संदेश देता है कि जीवन में आशा का होना अत्यंत आवश्यक है। आशा वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब व्यक्ति निराश होता है, तब आशा की एक छोटी सी किरण भी उसके जीवन में नया उत्साह और आत्मविश्वास भर देती है। यह दिवस लोगों को सकारात्मक सोच अपनाने, एक दूसरे का सहयोग करने और बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देता है। आज के समय में जब दुनिया अनेक चुनौतियों का

सामना कर रही है, तब आशा, एकता और सहयोग का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमें निराश लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए तथा प्रेम, दया और सद्भाव का संदेश फैलाना चाहिए। दोस्तों, इस चर्चा के बाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज रविवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स।

0: दोस्तों, आप भी हमसे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें कॉल करें इन नंबरों पर 2325402352558। हमारा स्टडी कोड है 031192। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो फ्रेंड। हेलो, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
0: जी, हम सब भी बिल्कुल ही ठीक है। तो आपका नाम कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं ग्राम गुनौर जिला सुताराम महाराष्ट्र से तनुश्री सर्वे बात कर रही हूँ।
0: जी तनुश्री जी, कैसी हैं आप?
1: जी मैम, बहुत आपसे बात हुई ना तो और बढ़िया हो गई।
0: जी हमें खुशी हुई आपने हमें कॉल किया। तो बताइए, आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म का नाम है सलामी और गाने तो वाले चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। दोस्तों का नाम लेना चाहते हैं?
0: हाँ जी जी जरूर, आपने बहुत अच्छा गाया जी।
1: थैंक यू। मेरे तो आप है
0: जी धन्यवाद।
1: और मेरे पापा को डेडिकेट लेगा भगवान सिंह परमार जी है, राकेश जी है, शिमला से गंगाधर सावनकर जी, इन सबकी मैं साथ सुनूंगी।
0: जी तो चलिए तनुश्री जी, हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर।
1: हेलो म्यूजिक लवर, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका नाम कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, शिमला हिमाचल प्रदेश
0: जी
1: से।
0: राकेश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम भी सुन रहे हैं।
0: जी, हमें खुशी हुई आपने हमें कॉल किया। तो बताइए, आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मुझे दिल तेरा आशिक मूवी का गाना सुनना है
0: जी
1: जी, तो इसका टाइटल सॉन्ग सुनना है और कुछ मैं दोस्तों को याद करना चाहता हूँ।
0: जी ज़रूर
1: सबसे पहले तो आप सुनेंगे इस गाने को,
0: जी, धन्यवाद।
1: तो पूर्णिमा जी है विजयपुरम से और पूरण वर्मा है जयपुर राजस्थान से, अविनाश तेली है, भगवान सिंह परमार है और तनुश्री का कॉल पहला लग चुका है, उनके लिए भी गाना डेडिकेट रहेगा।
0: जी, तो राकेश जी, आज
1: और
0: के दिन आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: आज के दिन युवा को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे जो युवा है नशे से दूर रहे और अपने अपने देश के लिए कुछ ऐसा काम करे जिससे भी आप तो आपके आपके गांव वालों को, आपके रिश्तेदार को, अपने आपके माँ बाप को जो है गर्व हो जाए, ऐसा काम ना करे जिससे आपके आपके माँ बाप का सर जो है शर्म से झुक जाए, क्योंकि आप ऐसा काम करो जो अपने माता पिता का नाम जो है ऊंचा ऊंचा कर पाए। और सबसे बड़ी बात, आज आज जो अंतर्राष्ट्रीय जो है आशा दिवस है
0: जी
1: वो
0: जी
1: भी
0: बिल्कुल
1: एक अच्छी ये, क्योंकि आशा जो है हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, आशा हमें जीवन में
0: आगे
1: क्या
0: बढ़ने का
1: बोलते
0: प्रयास, जी प्रेरणा देती है।
1: आगे
0: आपने
1: बढ़ने का
0: बिल्कुल
1: प्रेरणा
0: सही
1: देती
0: कहा
1: है। तो
0: जी जी तो आपने बहुत अच्छा संदेश दिया राकेश जी। चलिए, हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर।
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, आपका नाम कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं सचिव बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। मैं
0: जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ। आज पर्यावरण दिवस है तो पर्यावरण की ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ पूरी आकाशवाणी टीम को।
0: जी
1: और
0: हमारे
1: आज
0: तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। तो बताइए आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मूवी का नाम है, फिल्म का नाम है सिंदूर गाने वाले पतझड़ सावन बसंत बहार।
0: जी बहुत ही प्यारा।

0: गीत है। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि युवा कौशल दिवस मनाने वाले हैं हम, तो
1: हाँ,
0: आप युवाओं को
1: युवा
0: क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: युवा कौशल दिवस कै तारीख को बनेगा?
0: जी 15 तारीख को।
1: कैसे समझा, मैं समझ नहीं आ रहा कैसे बता रहे हैं।
0: जी, तो मतलब आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: तो मैडम जी, जो युवाओं के लिए क्या बढ़िया तरह से रहना चाहिए, और जो प्रोग्राम आएगा तब मैं समझ बताएंगे अभी तक।
0: जी, तो चलिए हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर, हेलो हेलो म्यूजिक लवर, मेरी आवाज आ रही है आपको?
1: जी आ रही ना
0: जी नमस्कार, आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी, गजराज लोधी बात कर रहा हूँ, रेलाई राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश से। जी,
0: जी गजराज जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं, आप लोग सुनवाइए, आप कैसे हो?
0: जी हम सभी बिल्कुल ही ठीक है। तो बताइए आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: करण अर्जुन मूवी का गाना है,
0: जी
1: एक मुंडा मेरी उम्र दा,
0: जी
1: दिलों
0: बहुत
1: की
0: ही
1: बातें नहीं
0: शानदार गीत
1: जानता।
0: है जी। तो वैसे आप करते क्या हैं?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और जो दुकान है अपनी शॉप, उस पे रिपेयरिंग होती है, मतलब मोटर जो रहती है ना खेतों के लिए
0: जी
1: पंप,
0: जी
1: उनकी रिपेयरिंग होती
0: जी बहुत अच्छी बात है। तो आज की शाम ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: है। ये हमारे भगवान सिंह जी हैं, केसरी सिंह जी हैं, कल्याण सेन जी हैं, अविनाश जी हैं, आशुतोष जी हैं, और संगीता बहन जी हैं, लोकेन्द्र वर्मा जी हैं, मांगीलाल चंदेल, नरेश प्रजापति, राम नरेश जी हैं,
0: जी
1: और राम बाबू शर्मा जी हैं, राम बाबू कोला रोड से भोपाल से हैं, धर्मवीर जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं, साहिलदार जी हैं, और नईम मलिक जी हैं, पंचाराम जी हैं, पुष्कर नाथ जी हैं, श्याम जी हैं, सोनू भाई हैं।
0: जी तो राकेश जी, हमें आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। चलिए हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों, आप भी हमसे अगले हफ्ते इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें कॉल करें इन नंबरों पर 2-3-2-5-4-0-2-3-2-5-5-8। हमारा स्टडी कोड है 0-3-1-9-2। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे लेते हैं विदा। अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ हेलो म्यूजिक लवर्स।

श्रोताओं, अभी आप युवाणी कार्यक्रम के तहत लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो म्यूजिक लवर्स सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे है और अब समय है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का।

कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है उड़न खटोला फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर की, गीत रचना शकील बुदयानवी की है और संगीत नौशाद का।

अभी आप लता मंगेशकर की आवाज़ में गाइड फिल्म का गीत सुन रहे थे। श्रोताओं, अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में हम दोनों फिल्म का ये गीत।

अब सुनते हैं आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार आनंद बख्शी की लिखी रचना। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गीत को हमने लिया है आजाद फिल्म से।

अब सुनते हैं आनंद बख्शी के लिखे बोल, जिसे संगीत ने सजाया आर डी बर्मन ने। स्वर उषा उत्तप और साथियों का है, फिल्म है शालीमार।

श्रोताओं, अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम गीत, हम तेरे आशिक हैं फिल्म का शीर्षक गीत। आवाजें आशा भोसले और महेंद्र की, गीत रचना साहिर की है और संगीत दिया रविंद्र जैन ने।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। आप सुनते हैं रोजगार समाचार, तत्पश्चात देशभक्ति गीत। सबसे पहले सुनते हैं रोजगार समाचार। अंडमान लोक निर्माण विभाग APWD में कार्यपालक अभियंता सिविल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के पदों को प्रतिनियुक्ति ISTC के आधार पर प्रारंभिक 2 वर्ष की अवधि के लिए भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेतन लेवल 11 ग्रुप ए राजपत्रित गैर मंत्रालय नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी। अभ्यर्थियों को इनमें से कोई एक शर्त को पूरी करनी होगी। मूल विभाग कैडर में समान एनोलॉजस पद पर नियमित रूप से कार्यरत अधिकारी या पे मैट्रिक के लेवल 9 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 5 वर्ष की सेवा या पे मैट्रिक्स के लेवल 7 में नियुक्ति नियमित

नियुक्ति के बाद कम से कम 7 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की पार्ट ए पार्ट बी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थियों को सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 वर्ष होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा, 2 प्रांतियों में विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, पिछले 5 वर्षों का अपार, प्रांतियां भी लगानी होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन उप सचिव PWD अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय कक्ष संख्या 139 श्री विजयपुरम में 18 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय विभाग से संपर्क किया जा सकता है। ये थे रोजगार समाचार। अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाली है। अब से कुछ ही देर में समाचारों का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मूज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ोरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से।

0: भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फुक्वाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, एशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
3: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान

0: राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
2: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। ये आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
3: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक

अतिरिक्त गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील है। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रखा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: छायानट से कर रहे हैं। विलंबित झुमरा, इनायत हो, द्रुत तीन ताल, येरी मालनिया, द्रुत तीन ताल, तराना।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री पंचाक्षरी हिरेमठ। श्री कुमार मर्डूर विल बिगिन हिज वोकल रिसाइटल विद राग छायानट। विलंबित झुमरा, इनायत हो, द्रुत तीन ताल, एरी मालिनिया, फॉलोड बाय तराना इन द्रुत तीन ताल।

0: अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मल्डूर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती कराता।
1: You just heard राग छायानट। श्री कुमार मल्डूर विल नाउ प्रेजेंट राग बागेश्री। विलंबित एकताल सखी मना लागेना, द्रुत एकताल बिनती करता।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मरडूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was Raag Bageshri. With that, we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was earlier recorded at Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। अब सुनते हैं मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, पर मछुआरों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि समुद्री तटों पर हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहने तथा इसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। इसलिए मछुआरों को 14 तारीख तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये थी मौसम की जानकारी। इसके साथ ही हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026। सुबह के समय 5:28 और 30 सेकंड हुए हैं। आज की हमारी पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: श्रोताओं, सुबह के समय 5:30 हुए हैं। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए ये अनमोल विचार।
1: चेतना वो प्रकाश है जो हमें सही और गलत का भेद समझाकर जीवन में सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देता है। जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति ही स्वयं का, समाज का और राष्ट्र का उज्जवल भविष्य बनाता है।
0: अभी आपने सुना ये अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले लीजिए सुनिए ये मातृ वंदना।